नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चुनावियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड दे 6 दिन दौरे ते होंगे। भारत अपनी ब्रिक्स प्रधानगी हेठ ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन मीटिंग की मेज़बानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ खेत्र ट्रस्ट ने अज अयोध्या अपने मैंबर की एक मीटिंग बुलाई है। राष्ट्रराज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्होंने जन्म वरेगंढ से श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। तो फीफा विश्व कप 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे हथों 1-2 हार तो बाद ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल तो संन्यास लैण का ऐलान किया है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड का 6 दिन दौरा अज तो शुरू हो रहा है। पहले पड़ाव वो अज शामी 2 दिन दौरे लिए इंडोनेशिया पहुँचे। यह प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया का 4th दौरा होगा। मई 2018 दुआले संबंधों एक व्यापक रणनीतिक भाईवाली तक वधाने तो बाद यह उन्होंने दूजा दौरा है। कल प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो नाल गलबात करनगे ते रणनीतिक भाईवाली विच होई प्रगति की समीक्षा करनगे। जकार्ता विच प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों नूं भी संबोधन करनगे। श्री मोदी सभ्याचारक ते इतिहासक शहर योग्यकार्ता भी जाणगे जिथे ओह परमबन्नन मंदिर का दौरा करनगे। भारत इस यूनैसको विश्व विरासत के रख रखाव च सहायता कर रहा है। दौरे के दूजे पड़ाव में प्रधानमंत्री 8 जुलाई में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पहुँचे। वो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीस्ट नाल भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में दोवे देशों के सनती आगुओं को संबोधन करेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय भाईचारे के मैंबर नाल भी मुलाकात करेंगे। दौरे के तीजे पड़ाव में श्री मोदी 10-11 जुलाई में न्यूजीलैंड में होंगे। वह न्यूजीलैंड के नवे प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन नाल गलबात करेंगे। दोहां नेतावां विचकार होने वाली गलबात में दुआले संबंधों की समीक्षा शामिल होगी। पिछले 2 सालों में व्यापार, वणज और रक्षा खेत्रों में दोहां देशों के संबंध मजबूत हुए हैं। 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड का पहला दौरा होगा। भारत अपनी ब्रिक्स प्रधानगी हेठ ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन मीटिंग की मेज़बानी करेगा। महिला ते बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स मैंबर देशों के सीनियर अधिकारी केरला के कोची में आज तो शुरू हो रही इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वख-वख खेत्रों में महिला शक्तिकरण ते महिला अगवाई वाले विकास नाल संबंधित मुख मुद्दों ते विचार वटांदरा किया जाएगा। सांझी तरजीह के खेत्रों में सहयोग वधाउण ते भी विचार वटांदरे किए जाएंगे। ये मीटिंग मैंबर देशों औरतों की अगवाई वाले विकास से सहमति बनाने का मौका प्रदान करेगी। मंत्रालय ने कहा है कि मीटिंग 8-9 जुलाई में होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री पदरी सम्मेलन लिए राह पदरा करेगी। भारत असाम के गुवाहाटी में ब्रिक्स नशा विरोधी एजेंसियों के मुखियों की 2 रोज़ा मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि अज तो शुरू होने वाली इस मीटिंग का उद्देश्य संस्थागत संबंधों मजबूत करना और नशा विरोधी एजेंसियों विचकार सहयोग वधाना है। मीटिंग खुफिया जानकारी साझी करन, समर्था निर्माण ते उभर रही चुनौतियों प्रति प्रभावशाली प्रतिक्रम से केंद्रित होगी। यह समागम नरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वालों कराया जा रहा है। 2 रोज़ा मीटिंग के अंत में ब्रिक्स देशों के दे नशीले पदार्थों विरुद्ध समूह कार्रवाई से एक साझे ऐलाननामे के दस्तखत किए जाने की उम्मीद है। रसायण ते खाद मंत्रालय ने ऐलान किया कि खादा ते कच्चा माल भारत लिया रहे कोल 15 जहाज

एक विशेष सूचना, आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in। की तुसी रेडियो प्रोग्राम जां वधिया कंटेंट बनाउंदे हो? आकाशवाणी जलंधर तुहाडे लई लेके आया है एक सुनहरी मौका। प्रसार भारती अपनी नवी कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी 2024 दे तहत सारे प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तों वक्-वक् प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मंग कर रहा है। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग, स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। बधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।

0: चोरी है कोई कसर टॉप टू बॉटम मार्क्स तुझे दिए मैंने 10 out of 10
1: क्यों नहीं चाहिए चल
0: ओके देन भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर टल्ली तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल्ली तू मैं ही बचाऊंगा तुझको।

दोस्तों, जियानू जियानू जियानू, प्रोग्राम शुरू हो गया है। दिल अपना पंजाबी, यानी दिल तो दिल तक पंजाबी। मैं तुम्हारी अपनी आज दोस्त राहिल तो सन एंटर के 102.7 FM रिंग दे नाल नाल 103.6 MHz भी। फिर साढ़े दोस्त अज बड़ी एक्साइटेड ने। दिल अपना पंजाबी प्रोग्राम जिदा ही शुरू होंगे सारिया के दिमाग के आ जाते हैं, अज आप गल करेंगे, अज आप गल करेंगे, अज आप एक दूजे तो

हमारी इच्छरा ने फड़ला पूर्ण जदो जलादा गई बेच कचहरी दे सुनिया नाराज फरियादा मारे सिर कंदाना रो रो अपना आप खपावे अज दिसदा दर्दीना गेड़ा पूरन नू छडवावे अज दिसदा दर्दीना गेड़ा पूरन नू छडवावे पूरन दा दोष नहीं लूणा झूठी तो मत लाके हो पिछला वैर कोई रखता पूरन भगत पसा के राजा हंकारी भी पुत ते जरा तरस ना खावे अज दिसदा दर्दीना गेड़ा पूरन भगत छडावे अज दिसदा दर्दीना गेड़ा पूरन नू छडवावे राजा कह जलादा नू एनू बकरे वांग चटका के सुट दियो विच खूमे दे निक्के निक्के पीस बना के सुट दियो विच खूमे दे निक्के निक्के पीस बना के जो सब कपड़ा कोई प्योरी पगनू ना हथ पावे अज दिसदा दर्दीना गेड़ा पूरन नू छडवावे अज दिसदा दर्दीना गेड़ा पूरन नू छडवावे।

हुक्मबाद शादा तुर पे खूवे वाल कसाई अगे ला पग तुनू लिया मारी जान लबाते आई पैण होर कले जेनू पूर्ण जदो बिछड़दा जावे अज दिसदा दर्दीना जेड़ा पूरननू छडवावे अज दिसदा दर्दीना जेड़ा पूरननू छडवावे पापी काल दा रूप बना के पूरन मन जीत सिया बह गया कोल जला दाया के पूरन

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। ते दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया जी गीत बहार। वेल दोस्तों प्रोग्राम गीत बहार दे विच निवेदिता दा रहेगा तुहाडे नाल साथ। ते प्रोग्राम दे विच खूब सारे फिल्मी गाने ते गल्लां बातां दा सिलसिला भी जारी रहेगा। सो तुसे जाना किते भी नहीं है, बने रहना इसी तरह ही मेरे नाल, क्योंकि बहुत सारियां गल्लां अज मैं तुहाडे नाल करनी है। ते प्रोग्राम गीत बहार दे विच सोहणे सोहणे गीत भी तुहाडे लई प्ले करने है। सो इसी तरह ही मेरे नाल एफएम रेनबो दे नाल बने रहना, किते भी नहीं जाना। ते रेडियो ते तुहाडे लई प्ले कर रही हूं बहुत ही प्यारा जिहा गीत मोहित चौहान दी आवाज दे विच। एंजॉय करते हैं ए गीत।

एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम गीत बहार निवेदिता दे नाल। वेल दोस्तों, आज अपने आप नू कॉम्प्लीमेंट दिता है। नहीं तुसी सोच रहे हो कि एकदम ये गल्ला कर रही है, नहीं बहुत जरूरी है। तुहानू पता है सेल्फ लव सेल्फ केयर बहुत ही जरूरी है, सब तो जरूरी है। जेकर असी अपने आप नू खुश रखांगे ना तो फिर असी सब नू खुश रख सकांगे। सो एक वर्ड अपने आप दे लई कॉम्प्लीमेंट अपने आप नू जरूर देना चाहिए। रोज़ हर रोज़ शीशे दे सामने खड़े होके कोई हर्ज नहीं जे असी अपने आप नू कह दईए कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी इंटैलीजेंट, यू आर वेरी कोऑपरेटिव। एक वर्ड ही तो है जदों असी अपने आप नू कहने आ ना तो उहदे नाल सानू बहुत खुशी मिलती है। यस, इहनू अजमा के देखना। एक अपने आप नू कॉम्प्लीमेंट देना, अपने आप नाल गल्लां करनियां ते अपने आप नाल मुस्कुराना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जिहड़ी स्माइल थैरेपी है ना, जदों असीं अपने आप नाल हसदे हां अपने आप लई मुस्कुराने हां ते फिर उहदे बहुत फायदे है। साडी मैंटल हैल्थ भी ते फिजिकल हैल्थ भी बहुत ही वधिया रहिंदी है, फिट एंड फाइन रहिंदे आ जेकर असीं अपने आप नू प्यार करना, अपने आप नाल गल्लां करनियां ते अपने आप नू प्रेफरेंस देनी प्रायोरिटी देनी शुरू कर देंदे आ ते फिर किन्ना औखा काम है। यस, बहुत आसान है, पर अजमा के देखना। इदा लगेगा कि यह दुनिया ही बदल गई है, क्योंकि जो असं अपने आप नू पसंद करन लगते हैं ना तो असं अपने आप दे खुद ही वेलविशर बन जाने, तो उस तो वड्डा साडे लिए कोई हिमायती नहीं हुंदा। जो असं अपने आप नू प्यार करन लग जाने तो अपने आप का खुद ही साथ देना शुरू कर देने। सो दोस्तों, अजमा के देखना, लाइफ के विच देखना, तुहानू लगेगा कि लाइफ के विच एक नवा मोड़ आ गया जी। तो चलिए फिर हुण आपां एंजॉय करते हैं अरिजीत सिंह ते नीति मोहन की आवाज़ के विच प्यारा जिहा गीत, तेरे संग इश्क हुआ।

जी तेरे संग इश्क हुआ, इश्क अपने आप नल कीता जाए तो बहुत ही वधिया होंदा है, क्योंकि उदा कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी उदा सानू नेगेटिव रिस्पांस नहीं आना। सो अपने आप ले जीना बहुत ही जरूरी है। सो दोस्तों अगे वधदे हां ते गल करदे हां प्री प्लानिंग दी। यस, प्री प्लानिंग बहुत ही जरूरी है, चाहे असीं छोटा जिहा काम भी करना होवे ते प्री प्लानिंग तो बिना नहीं चल सकते। जेकर असी प्रॉपर प्लानिंग करके चलांगे तो काम के रिजल्ट चंगे आते हैं, टाइमली खत्म हो जाता है, और जिहड़ी सानू अलग तो हैप्पीनेस मिलती है उहदी तो कोई रीस ही नहीं है ना। कई बार की होंगे कि असं कहने यार ये तो छोटा जिहा काम है, फिर क्यों हो गया, कर लाँगे, ये तो मेरा चुटकियों का काम है। पर नहीं, प्लानिंग तो बिना जेकर कई बार काम किया जाए तो छोटा जिहा काम भी इन्ना क लटक जाता है, इन्ना क लटक जाता है ना, तो असं कहने ओ हो क्यों नहीं मैं पहला ध्यान दिता। सपोज कि असी कितने जाना ही है, असं ये कि चलो कोई ना लंघते लंघते 5 मिनट का काम है, मैं कर लाँगा, है ना। काम जरूरी है पर लगने 5 मिनट ही से, पर जाके पता लगता है जी वो जगह, वो शॉप, वो ऑफिस तो अज बंद है, तो फिर असं सोचते ओए होए यार मैं क्यों नहीं कॉल की पहला। प्री प्लानिंग बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार छोटा जिहा काम भी ना बहुत ही लंबा लटक जाता है जदों असी उन्हूं प्लान करके नहीं चलते। सो किसी भी काम नूं छोटा ना गिनिया जाए, हर काम की प्लानिंग करनी बहुत ही जरूरी है। दिन की प्लानिंग करनी जरूरी है, कितने जाना है, ट्रैवलिंग दे ले जा रहे हैं तद भी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। जेकर असी अपने बच्चे का शेड्यूल बना रहे हैं, उन्हें पढ़ाना है, उसकी एक्टिविटीज़ करवानी है, तद भी प्लानिंग बहुत जरूरी है। कोई भी काम बिना प्लानिंग तो नहीं करना, क्योंकि काम तो करना ही है, और जेकर असी 5-7 मिनट पहला लगा लेंगे तो रिजल्ट बहुत सोहने आते हैं। सो प्रोग्राम गीत बहार के इस तरह ही बने रहना मेरे नाल, इंजॉय करते रहो। तो हुण विशाल मिश्रा जी की आवाज़ के आओ इंजॉय करते हैं यह गीत।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। ते प्रोग्राम चल रहा है गीत बहार। ते गीत बहार दे विच गल्लां बातां दा दौर भी नालो नाल जा रही है। सो दोस्तों गल कर रहे सी कि सानू अपने एनवायरनमेंट नू भी कंट्रोल करना है जी। कितना तुसी कह रहे हो कि सारा कुछ असी ही करना है, एनवायरनमेंट भी असी कंट्रोल करना है, घर दा कम भी करना है, बाहर दा भी करना है, सारा कुछ असी करना है। यस, सानू अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल करना। उहदा की मतलब है कि जदों असीं बाहर वॉक करन लई जा रहे हैं, सानू लगता है कि साढ़े आस पास कूड़ा करकट फैलिया होया, कोई हर्ज नहीं जेकर असी पे कोल पे डस्टबिन दे विच फेंक देंगे, और जेकर असी किसी एक दो रूल समझा देंगे, और जेकर असी किसी दस देंगे कि नहीं भाई इदा नहीं इदा करना है, असी अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल दे विच रखना है, क्योंकि असी ये नाल की कर रहे हैं, असी बाकियां दा भला तक कर ही रहे हैं, असी अपना आला दुआला सवारन दे विच एक चंगे नागरिक होन दा रोल भी प्ले कर रहे हैं, और हमेशा रूल्स नू नाल लेके चलिए। जेड़े साइडवॉक्स बने हुए ने उत्थे ही तुरिए, एवें नहीं कि इधर उधर सड़कां ते भज्जी जाइए ते असी बाकी रोड ते जान वालियां लई भी प्रॉब्लम क्रिएट करिए। सो हमेशा ही ध्यान दे विच रखना कि असी अपने एनवायरनमेंट नू कंट्रोल करना है, जिथे जा रहे हैं उत्थे आला दुआला सोहना बनाना है, ते रूल्स डिसिप्लिन नाल लैके चलना है। जगह जगह साढ़े कोल डस्टबिन पए होंदे ने, उन्हां नू यूज़ करना है, वाटर टैप्स भी लगियां होंदियां, कई बार जे कि लीकेज हो रही है तो उन्हें बंद कर दिए, इग्नोर करके अगे नहीं जाना। जेकर असी इग्नोर अज असी इग्नोर

एफएम बैंड 102.7 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी सुन रहे हो एफएम रेनबो दे हुन पेश ने एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तो इंडोनेशिया आस्ट्रेलिया ते न्यूजीलैंड दे 6 दिना दौरे ते होंगे। भारत अपनी ब्रिक्स प्रधानगी हेठ ब्रिक्स महिला कारज समूह की 2 दिना मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ खेतर ट्रस्ट ने आज अयोध्या में अपने मैंबर की एक मीटिंग बुलाई है। राष्ट्र राज्य भारतीय जन संघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी नूं उनां दी जन्म वरेगंढ ते श्रद्धांजलि भेंट कर रहा है। रसायण ते खाद मंत्रालय ने ऐलान किया है कि खादा अते कच्चा माल भारत ले आ रहे 15 जहाज सुरक्षित ढंग नाल होरमुज़ स्ट्रेट पार कर गए ने। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के पहले 3 दिन दौरान 56,000 तो वध श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा तीर्थ स्थान के दर्शन किए ने। पंजाब के पट्टी दर्ज जातां नाल संबंधित विद्यार्थियों लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम साल 2026-27 का पोर्टल अधिकारित तौर पर खोल दिता गया है। फीफा विश्व कप च 5 वार दे चैंपियन ब्राजील दी नार्वे तो 1-2 नाल हार तो बाद ब्राजील दे महान फुटबॉल खिडारी नेमार जूनियर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल तो संन्यास लैण दा ऐलान कीता। क्रिकेट विच आस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड नूं हरा के आईसीसी महिला 2020 विश्व कप जीत लिया है। सन एफएम न्यूज़ हेडलाइंस ते कुछ ही पलों में तुसे एंजॉय करोगे प्रोग्राम पंजाबी तड़का।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो ते दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है पंजाबी तड़का जी। तुसी जानते ही हो कि पंजाबी तड़का दे विच तुसी की करना है।

जी मैनू पता है मैं की करना है, तो तुहानू भी पता है तुसी की करना है। तुसी करना है जी नंबर डायल, नंबर है 0181 28 13 074। तुसी डायल करना ही है ते गलबात करनी है मेरे नाल, ते अपनी पसंद का गीत जेकर तुसी सुनना चाहते हो ते वह भी फरमाइश कर सकते हो। असी पूरी कोशिश करांगे कि तुहाडी फरमाइश नू पूरा किया जाए। ते होर कोई गलबात, कोई किस्सा, कोई कहानी साढ़े नाल जां साढ़े जरिए तुसी स्रोतियां दे नाल सांझी करना चाहते हो ते वह भी कर सकते हो। फिर देर किस गल दी, चुको फोन ते करो डायल 0181 28 13 074। फटाफट फोन चुके कॉल करनी शुरू कर दियो जी, क्योंकि निवेदिता थोड़ा इंतजार कर रही है। सो प्रोग्राम की शुरुआत में पहला गीत मैं अपनी पसंद का लगा रही हूँ, तो उस तो बाद अगले गीत होंगे सिर्फ तो सिर्फ तुहाड़ी पसंद है। सो फटाफट गीत सोच लो तो नंबर मिलाओ 28 13 074।

0: एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम पंजाबी तड़का ते सुन रहे हो 102.7 एफएम रेनबो और अगले कॉलर साढ़े कोल पहुंच चुके ने गल कर दे रहे नाल हेलो
1: हेलो
0: स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच कौन दोस्त गल कर रहे

0: थैंक यू मैडम। मैं गुराया तो रविंदर कुमार कैंपो बोल रहा जी।
1: स्वागत है जी, गुराया वालों का की हाल चाल है?
0: हाल चाल बहुत बढ़िया जी।
1: तो गुराया का की हाल है?
0: गुराया का हाल भी अच्छा है। बारिश नहीं हो रही ज्यादा, बस
1: नहीं हो रही ज्यादा,
0: वो बस माड़ा जहा जिदा कहते होंगे उलामा ला के चल जाता।
1: रेडियो सुन लिया ना ते आज देखियो फिर बरसात ना चंगी नहीं लगे। जी बिलकुल बिलकुल यही कहना पैना, सत बचन कहे तो ठीक है, जे एवे झुरी जावे तो फिर कम औखा ही है,
0: अपने आप का ही नुकसान
1: करा गे,
0: कोई फर्क नहीं पैना।

0: एंजॉय कर रहे जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है पंजाबी तड़का और पंजाबी गीता दे सिलसिला चल रहा है जी। और लगातार कॉलर्स या सानू कॉल्स आ रही हैं ने, कल करते हैं अगले कॉलर्स कौन पहुंचे ने। हेलो
1: हेलो मैडम, सत श्रीकाल जी।
0: सत श्रीकाल जी, कौन गल कर रहे हो?
1: हाँ जी, सुरेंद्र सिंह मल्लाकरार खां बोड़ वाला चौक जलंधर।
0: स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच, की हाल चाल है?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, तुसी सुनाओ
0: की कर रहे हो फिर?
1: बस रेडियो सुन रहे हैं जी।
0: रेडियो सुन रहे हो?
1: हाँ जी, घर ही बैठे हैं।
0: क्या बात है, ते फिर खा पी लिया, खाना खुना खा लिया?
1: नहीं, नाश्ता जी होना जी।
0: अजे होना है?
1: हाँ जी।
0: ए केड़े टाइम दा नाश्ता होया?
1: मैं सवेरे चाय पीना जी, ते नाश्ता यानी कि 12 बजे करता।
0: ठीक है, ब्रंच कर दो फिर, लंच दी छुट्टी है?
1: लंच दी छुट्टी।
0: ठीक है ठीक है, चलो वधिया। ते फिर मैनू दसो कि अज गीत केड़ा सुनना तुसी?
1: हंसराज हंस दा नच्ची साडे नाल।
0: अच्छा जी, जरूर प्ले करांगे। ते यही गाने दी फरमाइश क्यों?
1: बस जी, रोमांटिक गाना सुनने दा शौक हैगा, जां हिंदी गाने पुराने।
0: ठीक है, ते सब तो ज्यादा सिंगर कौन पसंद है, केड़ा सिंगर पसंद है?
1: सिंगर सारे ही है जी, तकरीबन कोई ऐसा जो नहीं है जो नहीं पसंद, सारे पसंद है। रेडियो दे बहुत शौकीन हां मैं।
0: ते फिर तां गा भी लैंदे होवोंगे? जे गीत सुनते हो तो गाते भी हो गए, तो फिर अज गीत के गा के सुनाओगे?
1: नहीं मैडम जी,
0: नहीं गाना नहीं गा सकते हो, एक अद्धी लाइन।
1: मेरे प्रॉब्लम हैगी है, मैं ऑपरेट कराया होया, मेरे को आवाज साफ नहीं निकलती।
0: ओहो, चलो कोई गल नहीं, तुसी रेस्ट करो, जो तुसी ठीक हो जाओगे ना फिर तुसी कॉल करके गाना सुनाना।
1: ठीक है,
0: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए जी।
1: थैंक यू मैडम।
0: तो लो जी, फरमाइश हुई है हंसराज हंस की आवाज़ के, गीत सुनना नची जो साढ़े नाल।

0: एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम पंजाबी तड़का। पर दोस्तों हुण समा हो गया है पंजाबी तड़का नूं वाइंड अप करन दा। ते जांदे जांदे एक कॉल असीं जरूर लवांगे। देखते हैं जी कौन ने लकी कॉलर। हैलो
1: हेलो, सत श्री अकाल मैम।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैम सोनू बोल रहे हैं जी, पिंड कूका तलवंडी, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला तों। मैम
0: स्वागत है जी, की हाल चाल ने सोनू जी?
1: हाल चाल मैडम बहुत अच्छे, तुसीं सुनाओ मैम?
0: बस वधिया, तुसीं वधिया।
1: मैं शुरू तों सुन रहा प्रोग्राम, बहुत अच्छा पेश कीता मैम तुसीं अज।
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू जी।

0: सारे प्रोडक्शन हाउसेस प्रोड्यूसर्स ते कंटेंट क्रिएटर्स तो वक-वक प्रोग्रामा लई अर्जियां दी मांग कर रहे हैं। तुसी रेवेन्यू शेयरिंग स्पॉन्सर्ड जां गेटस मोड ते साडे नाल काम कर सकते हो। अपनियां अर्जियां जल्दी भेजो। वधेरी जानकारी लई अज ही आकाशवाणी जलंधर नाल संपर्क करो। अप्लाई करन दी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है।
1: इंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम होम स्वीट होम। तो होम स्वीट होम में असी गल कर रहे थी कि बरसाती मौसम शुरू हो चुका है और असी इन्हां दिनों दे विच किवें अपना ध्यान रखना, किवें अपने घर बार का ध्यान रखना, किवें अपना ध्यान रखना। तो हुण गल उन्हां बच्चों लई किड्स दे लई जिहड़े कि बरसात दे विच भिज जांदे ने, ते की करना है जदों तुसी बरसात दे विच भिज जाओ। सब तो पहला तो जेकर तुसी भिज जाओ घर आंदे आंदे तो आंदिया ही तुरंत अपने जुत्ते मौजे ने जड़े सॉक्स ने वो उतार देनिया है, क्योंकि नमी ते हनेरे दे विच फंगस है जड़ा बहुत जल्दी पनपदा। सो पैरां दे विच सड़न ते बदबू दी समस्या हो सकती है। सो जदों भी बाहरों आओ पहला अपने सॉक्स ते जड़े शूज़ ने वो रिमूव कर दो, उतार दो। इस तो अलावा सड़क गड्ढे या ग्राउंड विच भरिया होया पानी है तो उत्थे बिल्कुल नहीं छलांगा मारनिया, उत्थे कूदना नहीं है, क्योंकि पानी के नीचे कच भी हो सकता है, खुलिया होया मैन होल भी हो सकता है, तो मच्छर भी खूब पनपते हैं। सो कट्ठे हुए पानी दे विच जाके जंपिंग नहीं करनी, छलांगा नहीं मारनिया। इस तो अलावा होर असी की करना जी जेकर असी भिज गए हाँ या नहा के आए हैं तो जो गिला तौलिया है या कपड़े ने वो बिस्तरे ते या सोफे ते ना सुट्टो, ना पटको, क्योंकि ये की होंगे जी शरीर दे विच दाद खाज और खुजली वाले जो रैशेज ने वो हो सकते हैं। सो बिस्तरे ते तुसी ए वाले टावल नहीं फेंकने बल्कि इनू सुखाना है। और इस तो अलावा इस मौसम दे विच हवा और पानी दे विच बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होंदा है। सो बाहर दा जड़ा खाना है जिवें चाट है, समोसे है, जड़ा भी स्ट्रीट फूड है, क्योंकि हवा पानी दे विच बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होंदा है। सो स्ट्रीट फूड खान तो तुसी बचना है, क्योंकि इहदे नाल सानू उल्टी दस्त दी प्रॉब्लम हो सकती है। सो परहेज़ करना है बरसाती मौसम दे विच। और सड़कां ते लगे लोहे दे खंबे ने, ट्रांसफार्मर है या कोई गिली दीवार है, घर दी भी गिली दीवार है, उनू भी टच नहीं करना, क्योंकि करंट आउण दी समस्या हुंदी है जेकर असीं गिली जगह ते टच करदे हां या लोहे दे खंबियां नूं असीं टच करदे हां। और छोटे बच्चों लिए एक टिप ये भी है कि प्लीज़ जदों इन्हां दिनां च घरों बाहर जाते हो तो घरदियां नूं जरूर दस के जाओ, क्योंकि कई बार बरसात विच फस जाते हो तो फिर करते इंतज़ार करते रहते हैं। सो हमेशा दस के जाओ तो कोशिश करो जेकर मौसम बरसात वाला है तो ना जाओ, तब बैटर है, क्योंकि अजकल भिजन के नाल बहुत जल्दी बुखार हो जाता है तो फिर परेशानी सारिआं नूं। सो इस छोटिया छोटिया जी गलों ने असी ध्यान रखना है, तो मैं लगता है कि जेकर असं छोटिया छोटिया गलों ध्यान में रखते हाँ तो फिर वड्डिया समस्यावान नहीं आदि। सो प्रोग्राम अगे लैके जा रहे हैं जी, प्ले कर जा रही हूँ तो प्यारा जहा गीत, एंजॉय करो तो वापस आओ।

प्रोग्राम चल रहा है जी, होम स्वीट होम। पर दोस्तों, होम स्वीट होम दे विच हुन समा हो गया थोड़े तो इजाज़त लैन दा, क्योंकि कड़ी दी जड़ी सुई है टिक टिक करती हुई पहुँच गई है जी 58 मिनट रह गए ने सिर्फ 2 ते हुन मैनू जाना पएगा इस प्रोग्राम दे विच। थोड़े तो इजाज़त लै रही हाँ जी, पर मैं अजे किते नहीं जा रही। कुछ ही पलों के बाद अगले प्रोग्राम मिडे मेलेडीज़ दे विच फिर होएगी मुलाकात। ते हुन जाते जाते मैं प्ले कर रही हूँ तुहाडे लिए इस प्रोग्राम का लास्ट गीत। तुसी एंजॉय करो ते फिर वापस भी आओ, क्योंकि कुछ ही पलों के बाद मुलाकात होएगी अगले प्रोग्राम दे विच मिडे मेलेडीज़ दे विच।

एंजॉय कर रहे हो जी 102.7 एफएम रेनबो। तो दोस्तों प्रोग्राम शुरू हो गया है मीठे मेलोडीज। तो आज दी एक खूबसूरत पहर असी नाम कर रहे हैं उस कलम दे जादूगर दी जिसने लुधियाने दी मिट्टी विच जन्म लेके पूरी दुनिया ते अपने लफ्जा दी हकूमत चलाई जी, साहिर लुधियानवी साहिब। दोस्तों साहिर ओ शायर सन जिन्होंने बॉलीवुड विच गीतकारां नू एक नवा रुतबा ते सन्मान दवाया सी। ओ धुनां ते गीत नहीं लिखते सन बल्कि संगीतकारां नू उन्हां दी शायरी ते धुनां बनाउणियां पैंदियां सन। ते आओ अज दी इस सुरीली यात्रा दी शुरुआत करदे हां ते उन्हां दा बेहद फलसफाना गीत मैं तुहाडे लई प्ले करन जा रही हां। मैं पल दो पल का शायर हूँ।

कल और आएंगे नगमे की खिलती कलियां चुनने वाले, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। एक महान शायर दी ए सादगी ही उन्होंने अमर बना दी है। चलो फलसफे तो हूँ अगे चलते हैं मुहब्बत दे उस खूबसूरत गुफ्तगू वाल, जिथे प्रेमी अपनी महबूबा नू अजे ना जान दी गुजारिश कर रहा है। संगीतकार जयदेव दी धुन ते साहिर साहब दे लफ्ज, ते गाया है रफी साहब ते आशा जी ने। गीत अभी ना जाओ छोड़कर।

के दिल अभी भरा नहीं, मोहब्बत विच दिल पर्दा भी किथे है जी। दोस्तों प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो मिड डे मेलेडीज़ दे, अज असी जिक्र कर रहे हैं साहिर लुधियानवी जी का। दोस्तों साहिर साहेब जिथे रोमांस लिखते सन उथे ही जिंदगी दे सच अते जिंदा दिली नू भी बखूबी जानते सन। जिंदगी विच मुश्किलां तां आउंदियां जांदियां रहिंदियां ने, पर जीवन दा अंदाज अजिहा होना चाहिए है कि हर फिकर धुएं विच उड जाए। तो आओ सुनते हैं बेफिक्री नाल भरिया अगला गीत, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।

उड़े जब जब जुल्फे तेरी, क्या बात है, पूरी ऊर्जा नाल भरपूर गीत। पर स्रोते उस साहिर दी खूबी ए सी कि जिथे वो अजिहा रोमांटिक गीत लिख सकते सन, उथे ही उस फिल्म विच वो देश दे मजदूरां अते आम लोकां दी ताकत नू एकजुट करन वाला गीत भी लिख सकते सन। ये गीत अज भी साडी एकता दी मिसाल है। साथी हाथ बढ़ाना।

एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, यह लाइना अज भी रूह नूं जगा दिंदियां ने। सो इस भारी माहौल तो बाद दोस्तों आओ तुहानूं लै चलदे हां यश चोपड़ा दे रोमांटिक सिनेमा वल। साहिर साहिब ने अपने निजी शायरी की किताब तलखियां विचों एक खूबसूरत नज़म फिल्म लई चुनी, जो अज भी हर आशिक की पहली पसंद है। गीत कभी कभी मेरे दिल में। एंजॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, दोस्तों मोहब्बत दी इस तो सोहनी पेशकारी शायद ही कोई होर होएगी। तो जदों मोहब्बत विच साथ निभाउण दा वादा होवे तां दुनिया दी कोई भी मुश्किल वड्डी नहीं लगती। संगीतकार रवि दे संगीत विच महेंद्र कपूर दी आवाज़ विच सजिया अगला गीत हर दिल नूं एक नवा हौसला दिंदा है। तुम अगर साथ देने का वादा करो।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: कुछ ही पलों विच तुसी सुनोगे खबरां पंजाबी विच साडे प्रदेशिक चैनल तों।

एंजॉय कर रहे हो जी प्रोग्राम मिठे मेलेडीज़। तो दोस्तों इस गीत की डूंघाई नू सिर्फ उही समझ सकते हैं जिन्होंने मुहब्बत नू बहुत नेड़े महसूस किया होवे। तो साढ़े आज के इस खास सफ़र के अखीर विच मैं थोड़े लिए हुण लेके आई एक अजिहा गीत जो अज भी हर विआह शादी के जशन की जान है। बलराज सानी साहिब की अदाकारी ते मन्ना डे की खणक की आवाज़ प्ले करांगी गीत मेरी जोहरा सवी। तो दोस्तों ये गीत होएगा प्रोग्राम का लास्ट गीत, तो इस नाल ही मैनू दिओ इजाजत प्रोग्राम नू एथे ही वाइंड अप करन दी। ते तुसी इसे तरह ही सुनते रहना 102.7 FM रेनबो। होएगी मुलाकात फिर किसी होर दिन किसी होर समय। सो इंजॉय करो ये गीत है मेरी जोहरा सवी।

FMN 102.7 MHz से आकाशवाणी जलंधर दा AIG रेनबो चैनल मैं हाँ जी तुहाडी दोस्त RJ सुरभी ते प्रोग्राम दी शुरुआत हो गई है जिसका नाम है दिल आज शायर है। सो मेरे प्यारे लिसनर्स, अज का बड़ा खास विशा मैं लैके आई हाँ। फिलहाल कई बार मैं अलग अलग विशा लैके आँदी हाँ तो सारे अप मेरे विषय मतलब कि जोड़ा मैं विशा दें वो अलग अलग शायरी मैं भेजते हो तो बड़ा चंगा भी लगता है। अज भी एक लफ्स मैं याद आया जो है खामोशी। एक खामोशी ना बड़ी अलग चीज़ है, यानी कि कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कह जाती है खामोशी। सो खामोशी एक ऐसा लफ्स है जिसनों सुनिया नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। कई बार इंसान हजारां शब्द बोल के भी ना अपनी गल नहीं कह सकता, तो कई बार एक खामोशी ही सब कुछ बयान कर जाती है। सो दोस्तों कहते हैं जिते शब्द हार जाते हैं उत्थे खामोशी बोलती है, पर हर खामोशी इको जी नहीं होंगी। किसी की खामोशी विच सुकून होंगे तो किसी की खामोशी विच शिकायत, तो किसी की खामोशी विच इंतजार, तो किसी की खामोशी विच टुटे हुए सुपनिया की आवाज़

प्रोग्राम चल रहा जी, दिल आज शायर है। मैं हाँ जी थोड़ी दोस्त आर जे सुरभी। प्रोग्राम दे विच साडे जिहड़े स्रोता ने सानू शायरी भेज रहे ने, ते बिना देर किते मैं अगली शायरी पेश करदी हाँ जी। कहिंदे ने जो रब करदा है चंगा करदा है, पुठियां सिद्धियां बंदा करदा है, माया दे लालच विच आ के पुट्ठा सिद्धा धंधा करदा है, कुदरत नाल खिलवाड़ करन लई रहिंदा कोई ना कोई पंगा करदा है, अपनी सियासत साधन दे लई इह धर्म दे नां ते दंगा करदा है, मन रूपी लक्कड़ ते जद पै जावन गंढा आ के खुद भगवान है फिर रंदा करदा है, जसल पक्का रख विश्वास तू रब ते फिर देखी राम किवें बखसंदा करदा है। जी हाँ जी, करन वाला रब है चंगियां सिद्धियां पुठियां, लेकिन आपां जिहड़े काम करदे आ ना, साडे जिहड़े कर्म है ओह ज़्यादा गिने जांदे ने, पर असीं कई बार एक कसूर रब दा कढ दिंदे आ जी। सो रब जिहड़ा है हमेशा चंगा ही करदा है, कदी वी रब साडा माड़ा नहीं सोचदा, इह गल हमेशा सानूं याद रखनी चाहीदी है। इह सानूं भेजी सी जी मेन बाज़ार पिंड चौकी ज़िला बठिंडा तों बसंत सिंह टेलर होना ने, बेटा लवदीप सिंह जसल ने। इस नाल ही एक होर शायरी मैं पेश करन जावांगी जांदे जांदे, ताकि समा जिहड़ा है साडे कोल थोड़ा जिहा है, ते मैं नहीं चाहुंदी कि किसी की भी जिहड़ी शायरी है मिस हो जाए। कहिंदे ने आंखें ख्वाब में छोड़ आया हूँ, बातें किताब में छोड़ आया हूँ, आंखें ख्वाब में छोड़ आया हूँ, बातें किताब में छोड़ आया हूँ, तुम मुझे कितना चाहते हो ये लिखना हिसाब में छोड़ आया हूँ, तुम जन्नत हो जन्नत की बहार हो, तुम खुशबू हो तुम्हें गुलाब में छोड़ आया हूँ, तुम दुआ हो दुआ भी कबूल होने वाली, तुम रिस्क हो मेरा तुम्हें शराब में छोड़ आया हूँ, तुम अच्छी हो अच्छे ही अच्छे की हकदार हो, मैं बुरा हूँ खुद को खराब में छोड़ आया हूँ। इसन पेजी सी जी सोनू होना ने मलेरकोटला तो। ते इस दे नाल प्रोग्राम दा सिलसिला जिहड़ा सी ओह इत्थे ही समाप्त हो रहा है, और बहुत वधिया तुसी मेरा साथ दिता अज दे प्रोग्राम दे विच। आपां अलग अलग टॉपिक्स दे उत्ते गल कर लई है, विशा मेरा चाहे खामोशी सी, बट फिर भी साडे जिहड़े लिसनर्स ने उन्होंने अपने दिल दे जज्बात मेरे तक पहुँचाए ने, बहुत वधिया लगा। सो गल करदे हां जी खामोशी दी, मैं भी कुछ जांदे जांदे कहना चाहूँगी कि अक्सर असीं उन्हां लोकां नूं समझ ही नहीं पाउंदे हाँ जो सब तो वध चुप रहिंदे हन। असीं इह सोचदे हाँ कि उन्हां नूं कोई फर्क नहीं पैंदा, पर सच तां इह है कि सब तो डूंघे जज्बात अक्सर खामोशी दे परदे पिछे लुके हुंदे हन। इस करके कदी भी तुहाडा कोई नाल दा तुहाडा कोई अपना प्यारा खामोश होवे ना, तो उस खामोशी नूं इगनोर ना करो। देखो कई बार खामोशी इगनोर करना भारी पै जांदा है, क्योंकि अगला बंदा नाराज़ भी हो जांदा है। इन्हां नाराज़गियां नूं दूर करन दा तरीका यही है कि तुसीं अपनियां दी खामोशी जरूर समझो। सो प्रोग्राम दा समा इत्थे ही हुण समाप्त हुंदा है, और मैं तुहाडे तों इजाजत लैनी हां जी। इस नाल तुहानूं दस्सां कि तुसीं पूरे 2:30 बजे यानी कि 2:30 ते साडा दिल्ली तों स्पोंसर प्रोग्राम उमंग सुनोगे। उस तो बाद मिलांगी जी फिर अगले प्रोग्राम दे विच। फिलहाल हुण दे लई मैनूं तुसीं इजाजत दो जी, उम्मीद करदी हाँ तुहानूं इह सफ़र चंगा लगा होएगा।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और राम दुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
1: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
2: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं, जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
2: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न, हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
2: 8800440559। और हमारी ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद, विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, जैसा

0: आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और एनसीईआरटी की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल एनसीईआरटी के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
1: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
0: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
1: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
0: जी,
1: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
0: जी,
1: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
0: जी।
1: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है, इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में, जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं
0: जी।
1: इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं, जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
0: जी।
1: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, और इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
0: जी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
1: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा करियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई सुन करके, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं, इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं जो डिजिटल

0: उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है। जब ज़्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है, वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीज़ों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी।
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है, उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी। और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती है। जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाए, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि देखिए किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर

0: सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहें, क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
1: जी,
0: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से, कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं
1: जी,
0: कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया, जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर, या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं, अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से।

0: साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना है इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं। तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो अब डॉक्टर साहब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है।
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है।
1: बिल्कुल।
0: उसकी पहचान करनी और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला।
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना।
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ?
1: जी।
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है।
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा जो वो निर्णय लें उस निर्णय

0: छोटे में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें। और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
1: जी,
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8440432, 8448440632। ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और NCERT के वेबसाइट पर YouTube में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं मैं अनुराधा। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार। श्रोताओं, हम सभी के आसपास पशु पक्षी होते हैं जिनमें कुछ पेट्स यानी पालतू जानवर हैं तो कुछ हमारे घरों के आसपास हमें दिखाई देते हैं जिनके संपर्क में हम जाने अनजाने आते ही रहते हैं। बेशक जानवरों से प्रेम करना ज़रूरी है, साथ साथ ज़रूरी है अपने आप को सुरक्षित रखना भी। इसी बात के मद्देनज़र हम जिस विषय पर आज चर्चा करेंगे वो है जूनोसिस। क्या है जूनोसिस और कैसे रहे इससे सुरक्षित, इस विषय में जानेंगे विस्तार से क्योंकि आज है वर्ल्ड जूनोसिस डे। आज के विषय से जुड़ी आपका भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि इस समय हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर एस के रसानिया जी, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर आर टी शर्मा जी, वेटिनरी डॉक्टर न्यू दिल्ली। तो आप दो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आपका भी है कोई सवाल तो हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स हैं 011-234-210-80 और 011-234-210-82। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868-1070-70। तो आप हमें कॉल करिए, मैसेज करिए और हम इधर स्वागत करते हैं अपने दोनों विशेषज्ञों का। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर एस के रसानिया जी, सबसे पहले आपसे मेरा ये सवाल है कि विश्व जूनोसिस दिवस क्या है और इसे 6 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है
1: जी।
2: आज विश्व जूनोसिस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पीछे इतिहास ये है कि लुई पाश्चर, जिन्होंने 1885 में रेबीज वैक्सीन की सफलता की याद में ये दिवस शुरू किया गया था
1: जी।
2: उन्होंने पहली बार रेबीज वैक्सीन एक बच्चे को लगाई थी जिसको रेबिट डॉग ने काटा था और उसका सफल परीक्षण किया था। इसका उद्देश्य हर साल मनाने का यह है कि लोगों को जूनोटिक रोगों के बारे में जन जागरूकता फैलाना और इसकी रोकथाम के उपाय के बारे में चर्चा करना, इसका उद्देश्य है
1: जी। बहुत ज़्यादा विस्तार से आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हम श्रोताओं से लगातार कह रहे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इसको गौर से सुने। आपका भी कोई सवाल है तो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। मेरा अगला जो सवाल है आपसे वो ये है कि जूनोटिक रोग क्या होते हैं और इनका मनुष्यों और जानवरों से क्या संबंध है?

0: जूनोटिक रोग वे संक्रामक रोग होते हैं जो जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं। देखा जाए तो लगभग 60% रोग जो हैं मनुष्यों में जो आज की डेट में हो रहे हैं वो जानवरों से होते हैं, और जो नई नई बीमारियां जो पैदा हो रही हैं 75% बीमारियां जो हैं ये कहीं ना कहीं जानवरों द्वारा फैलाई जा रही हैं। और इसका कारण बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, परजीवी हो सकता है, फंगस हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लगभग 60% संक्रामक रोग जूनेटिक रोग होते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, यहाँ एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, आगे की चर्चा इसके बाद।

0: शुद्धम संगीत से प्रेम हो, पशु पक्षियों से प्रेम हो, ये बहुत ज़रूरी है। और हमने बहुत ही प्यारा सा अभी गीत सुना, लेकिन जो मुद्दा है, जो विषय है, वो है कि हमें सुरक्षित रहना भी है, हमें जानवरों की सुरक्षा भी करनी है, पशु पक्षियों की सुरक्षा भी करनी है, लेकिन खुद को सुरक्षित रखना भी ज़रूरी है। इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को आप सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर आरती शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है कि पालतू पशुओं से भारत में सबसे आम जूनोटिक रोग कौन कौन से हैं जिनसे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं?
1: देखिए, हम लोग पेट के साथ ज़्यादा रिलेटेड हैं, बिकॉज इसमें डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इवन कैटल्स हैं, डेयरी फार्म है, पिगरी हैं, तो ये जो कि इन कांटेक्ट रहते हैं ह्यूमन के साथ, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा मेरे मन में, जो सबके लोगों के, इवन ए लेमैन के मन में सबसे पहले ध्यान यही आता है कि रेबीज डिजीज़ ऐसी है जो डॉग से या एनिमल से ह्यूमन को होती है, तो उसकी प्रिवेंशन भी होती है, लेकिन अगर वो उसके सिम्टम्स आ जाएं तो वो 100% फेटल डिजीज़ होती है। तो इसलिए हम लोगों को अवेयर करते रहते हैं, ना कि डराते हैं कि आप डॉग से दूर रहें, बट अवेयर रहेंगे तो आप रेगुलर वैक्सीनेशन करवाएंगे और उसको अपने डॉक्टर के साथ बात करेंगे, उसके कोई ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं तो आप उसको आइसोलेट कर सकते हैं और अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उसकी ओपिनियन ले सकते हैं। तो इसलिए रेबीज, मीन डॉग से आप ऐसे डरे नहीं कि हर डॉग इज़ नॉट ए रेबीज डॉग, दे आर नॉट बॉर्न विद दिस डिजीज़, लेकिन अगर वो उसको एनवायरनमेंट से या किसी और वाइल्ड एनिमल से रेबीज डॉग ने या रेबीज एनिमल ने उसको काटा है, तो उसको रेबीज अगर हो गई है तो वो रेबीज, अगर वो रेबीज डॉग अगर आपको काटेगा तभी रेबीज होती है। ऐसे हर डॉग बाइट एक रेबीज बाइट नहीं होती। और एक बड़ी मिथ है कि अगर जैसे विलेज में या ऐसे रिमोट एरियाज में जहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, अगर डॉग ने काटा है तो लोग वहाँ मिर्च लगा देते हैं या हल्दी लगा देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर ओपन वुंड को आपने मिर्च या हल्दी से बंद कर दिया तो वो वायरस अगर है तो वो मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के एब्सेंस में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और इन्वेड कर सकता है इन द बॉडी, वो डेंजरस है, वो नहीं करें। सबसे पहले अगर किसी भी एनिमल ने आपको बाइट किया, उस एरिया को आप 15 मिनट्स के लिए रनिंग वाटर में सोप के साथ क्लीन करते रहें और इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात करें। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो दे विल गिव द एंटी रेबीज बूस्टर्स और इम्यूनोग्लोबुलिन जो डॉक्टर उस टाइम पे उचित समझेगा।
0: जी, ये सिर्फ डॉग्स के मामले में है या जैसे बंदर काट लेता है, बिल्ली भी काट लेती है, उसकी वजह से भी समस्या हो सकती है?
1: लेकिन अगर वो रेबिड है तो ही, अदरवाइज ऐसे सिंपल बाइट तो वी ट्रीटेड एज ए ओपन वुंड ओनली, बट प्रिकॉशनरी अगर हिस्ट्री नहीं है, एनिमल इज नॉट वैक्सीनेटेड, तो प्रिकॉशनरी इवन मेडिकल डॉक्टर्स दे एडवाइज टू टेक प्रोफाइलेक्टिक डोजेस लाइक 0 डे, 3rd डे, 7th डे, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द वुंड। तो इसलिए कोई भी बाइट को आप सीरियसली नहीं ले, हमें सीरियसली लें और उसको अच्छी तरह वॉश करें और अपने डॉक्टर से बात करें।
0: मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कहीं बाइट हो गई है तो आप निश्चिंत हो जाएं कि अरे थोड़ा सा है, खरोच लगा है या कुछ है, बहुत अवेयर रहने की जरूरत
1: है। एनिमल से बहुत डिजीजेस कम्युनिकेबल होती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 70% डिजीजेस ऐसी हैं जो एनिमल से ह्यूमन को होती हैं, तो ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ रेबीज है, लेकिन अगर उसका आपने क्लीनिंग अच्छी नहीं, हाइजीन नहीं किया, जहाँ आपके पेट्स हैं और यूरिन है, अगर वो इन्फेक्टेड है लेप्टोस्पायरा से, तो इवन ह्यूमन कैन गेट लेप्टोस्पायरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि फेटल हो सकती है लेटर ऑन। ऐसे ही एक स्केबीज इन्फेक्शन है जो स्किन डिजीजेज होती हैं, अगर आपके पेट को है तो आपको भी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है आपके पेट में कोई भी एबनॉर्मल चीज़ है तो इमीडिएटली आपने वेटनेरियन से बात करें, तो उसको सेफ रखें और आप, मुझे लगता है आप भी उससे सेफ रहेंगे।
0: जी डॉक्टर एस के रसानिया जी, आपके पास आना चाहूँगी। जूनोटिक बीमारियाँ कैसे फैलती हैं और इनके प्रमुख संक्रमण के रास्ते कौन कौन से माने जाते हैं?
2: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, बीमारियां फैलने के बहुत तरीके हैं जो बीमारी पेट ये जानवरों से फैल सकती है। एक तो यदि कोई व्यक्ति सीधे संपर्क में आए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो संक्रमित जानवर को छूने से, उसको पालने से, उसको काटने या खरोंचने से, या उस जानवर के राल सलाइवा, खून या पेशाब या बलगम के संपर्क में आने से हो सकती है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है कि जैसे उन जगहों पर जहाँ आप जानवर रहते हैं, जैसे कि दूषित मिट्टी, एक्वेरियम का पानी, पालतू जानवरों के बर्तन, मुर्गियों के दड़बे, उनमें जाने से हो सकती है। तीसरा हो सकता है कि जो इंसेक्ट बाइट, कीटों के काटने से, जैसे कि कोई टिक्स या फ्ली

0: या जूं हुई उसे काटने से भी क्या हुआ, संक्रमित जानवरों को काटे और वो यदि मनुष्य को काट लेगा तो उसमें भी रोग हो सकता है, या दूषित भोजन के द्वारा जैसे कच्चा या अधपका मांस खाया, बिना उबला मांस खाया, या इन्फेक्टेड दूध पिया उस जानवर का, या ऐसा भोजन खाने से जो कि जानवर के मल से दूषित है, उससे भी ये बीमारियां फैल सकती हैं। तीसरा एक और मुख्य कारण है दूषित पानी द्वारा, जैसे ऐसे पानी को पीने से उसके संपर्क में आने से जिसमें संक्रमित जानवर का यूरिन या उसका मल यदि मिला हुआ है तो वो यदि ले लेगा तो उसमें हो जाएगा। तो कई प्रकार के जूनेटिक बीमारी हैं, उसको कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे कुछ वायरल बीमारियां हैं, कुछ बैक्टीरियल बीमारियां हैं, कुछ पैरासिटिक या परजीवी बीमारियां हैं, कुछ फंगल बीमारियां हैं, तो अलग अलग टाइप की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे मगर मुख्यतः जैसे डॉक्टर साहब ने बताया रेबीज है, इबोला वायरस है, फ्लू कोविड-19 है, फ्लू है, या सॉल्मोनेला है, प्लेग है, एंथ्रेक्स है,
1: कोविड-19 भी
0: उसी सीरीज में, क्योंकि कोविड-19 किस टाइम चमगादड़ से ये मनुष्य में चमगादड़ के जो फीकल मैटर था उससे ये आया, तो कहीं ये सब उससे, ये सब उससे रिलेटेड है।
1: जी डॉक्टर साहब, वन हेल्थ अवधारणा क्या है और जूनोटिक रोगों की रोकथाम में इसकी क्या भूमिका है?
0: देखिए वन हेल्थ जो है वो उसको तीन कंपोनेंट इसमें वन हेल्थ में है, एक है ह्यूमन हेल्थ यानी मनुष्य का स्वास्थ्य, दूसरा है एनवायरमेंट हेल्थ यानी कि वातावरण का स्वास्थ्य, तीसरा है एनिमल हेल्थ यानी कि पशुओं का स्वास्थ्य। यदि जैसा मैंने आपको बताया कि 60% या 75% बीमारियां मनुष्य के अंदर जो हो रही हैं आज की डेट में, कहीं ना कहीं उसमें एनिमल इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं इन तीनों का इंटरेक्शन, एनिमल हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट हेल्थ, तीनों का इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। उसके ऊपर अगर एक साथ मिलकर काम किया जाए तो उसका इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो वन हेल्थ अप्रोच है। ये 2022 में एक कंसेप्ट हिंदुस्तान में आया था कि इसको लेके इस पे कार्य हुआ था, ताकि विभिन्न मंत्रालय, लगभग 13-14 मंत्रालय या विभिन्न विभाग हैं जिसमें मिलकर काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो उस अप्रोच के माध्यम से इसमें काम हो रहा है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें अभी आपसे जानने को हैं और लगातार हम इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। श्रोताओं को भी बता दें कि अगर इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर्स है 01123421080 और 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। फिलहाल यहाँ ले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एस के रसानिया जी, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, और डॉक्टर आर टी शर्मा जी, वेटरनरी डॉक्टर न्यू दिल्ली। और आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही अहम विषय पर कि आप कैसे, अगर जानवरों के आसपास हैं, पशु पक्षियों के आसपास हैं, तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आपका भी है कोई सवाल तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। बहरहाल हमारे पास मैसेजेस आ चुके हैं। ये है देवदत्त परसौलिया जी का, प्रताप विहार गाजियाबाद से। इन्होंने लिखा है कि नाइस टॉपिक, सुपर प्रोग्राम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इन्होंने धन्यवाद किया है, लेकिन देवदत्त जी अगर आप अपना कोई सवाल करते तो और भी अच्छा लगता। बहरहाल डॉक्टर साहब, आर टी शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूँगी। मेरा सवाल ये है कि ह्यूमन से एनिमल को भी क्या कोई रोग हो सकता है?
2: या बिल्कुल हो सकता है। आज मैं अपने वॉइसलेस जो क्रिएचर है उनके लिए बैठा हूँ, क्योंकि हम लोगों को कल्प्रिट बनाया जाता है एनिमल्स को, कि 70% डिजीजेस इंसान को जानवर से होती है। पर मैं जब बोलता हूँ कि जो कल्प्रिट हैं अभी ह्यूमन भी हैं, उन्होंने फॉरेस्ट ख़त्म कर दिए, जंगल ख़त्म कर दिए, वहाँ के जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके लिए जगह ही नहीं छोड़ी आपने, उनको कोई न फ्रूट के ट्री लगाए न कुछ लिया। तो वो वाइल्ड लाइफ जब आपके अर्बन एरिया में आएंगी तो वो डिजीज़ तो फैलाएंगी, पर इसका जो कल्प्रिट है मुझे लगता है ह्यूमन खुद है। तो इसलिए हमें अपना फॉरेस्ट एनवायरनमेंट ये पूरा क्लीन रखना चाहिए, और उसका उन जानवरों के लिए भी जगह देना चाहिए, बिकॉज दिस अर्थ बिलोंग्स टू देम आल्सो। और बहुत सी ऐसी डिजीजें हैं जो ह्यूमन से हमारे पेट में होती हैं, जैसे एक फ्लू है, नॉर्मल वायरल इन्फ्लुएंजा जो होता है, जो इंसान जैसे सोर थ्रोट होता है, फिर

0: किसी को खांसी होती है, तो अगर कोई पेट जिसकी इम्यूनिटी लो है, जो बहुत क्लोज इंटरेक्टिव में रहता है अपने पेट अपने ओनर के साथ या उनके साथ सोते हैं, तो हमने पाया कि उनमें भी इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है और वो उनके भी सोर थ्रोट होते हैं, खांसी करने लग जाते हैं वो 8-10 दो इससे सेल्फ लिमिटिंग, लेकिन डिजीज़ तो है। अगर किसी को और कोई अंडरलाइंग डिजीज़ है हमारे पेट को, तो इट कैन बिकम ए वेरी सीरियस इन्फेक्शन। तो आप ध्यान रखें कि जैसे कोरोना है, अगर कोविड में भी हमारे पेट्स को बहुत एक्सपोजर हुआ था और बहुत केसेस आए थे, तो ऐसे में ह्यूमन से एनिमल को भी डिजीज़ होती है,
1: हो
0: इसको
1: सकती
0: रिवर्स
1: है
0: जूनियोसिस बोलते
1: जी।
0: हैं।
1: डॉक्टर साहब, हमारे पास अनुज जी का मैसेज आया हुआ है, दिल्ली से ही लिख रहे हैं कि क्या बर्ड्स से भी इन्फेक्शन हो सकता
0: या
1: है?
0: बर्ड जैसे पिजन्स हैं, इनका जो लाइक शिट है उससे भी आपको कॉक्सिडियोसिस एक इन्फेक्शन हो सकती है। तो फ्लॉक में रहते हैं तो एनी फंगल इन्फेक्शंस कैन बिकम ए सीरियस इन्फेक्शन इन द लंग्स। अगर किसी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी लो है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है।
1: जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा आपसे है कि वन हेल्थ मिशन जूनोटिक रोगों और महामारी के रोगों में कैसे मदद करता है रोकथाम के लिए?
2: देखिए, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये जो वन हेल्थ मिशन है, इसमें क्या है कि इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ एक साथ है। जैसे एक तो इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस, एकीकृत सर्वेलेंस निगरानी, मतलब सभी उसमें तीनों कंपोनेंट का, वेदर इट इज़ एनवायरमेंट हेल्थ, वेदर इट इज़ एनवायरमेंट हेल्थ है, ह्यूमन हेल्थ है, या आप बाकी मनुष्य के हेल्थ है, उन तीनों का एक इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस। कहीं भी कोई बीमारी होगी उसका इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस करना। दूसरा, कहीं भी अगर जल्दी चेतावनी, कहीं भी अगर कुछ हो तो अर्ली वार्निंग क्रिएट करते हैं, कहीं भी अगर कुछ भी आउटब्रेक होगा उसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम। प्लस डाटा शेयरिंग, कहीं भी अगर कुछ होगा तो ये नहीं कि एक ही विभाग एक ही चीज़ देखेगा, आपस में सब साझा करेंगे कुछ भी अगर आउटपुट होगा तो। और प्लस रैपिड एक्शन सिस्टम, कहीं भी अगर कुछ होगा तो उसके तुरंत त्वरित कार्रवाई करी जाएगी इसमें। तो इसमें रेबीज हुआ, बर्ड फ्लू हुआ, निपा जैसी जो बीमारियां हैं, तो शुरुआत में इनको, जैसे केरल में निपा वायरस का आउटब्रेक हुआ था, तुरंत उसमें रैपिड एक्शन हुआ और काफ़ी हद तक बहुत जल्दी ही उसको कंट्रोल में कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेटेड अप्रोच जो होती है, इसमें कहीं ना कहीं बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत लाभदायक, बहुत सहयोगी देती है जी।
1: जी, हमारे एक कॉलर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कौन है और उनका क्या सवाल है। जी, आपका

0: दिल्ली से परिधि जी का, खास करके आप आरटी शर्मा सर से सवाल कर रही हैं कि मेरे घर में 5 वर्षों से बिल्ली है और कई सालों से ये उसकी देखभाल कर रही हैं, लेकिन इनका बताना है कि ना तो वो पिंजड़े में रहना पसंद करती है, ना ही उसको नहाना पसंद है। तो ऐसे में मतलब कैसे केयर की जाए इन जैसे एनिमल्स की, और क्या इससे कोई ख़तरा हो सकता है कि अगर ये साफ़ सुथरे ना रहें?
1: देखिए, सबसे पहले हाइजीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है इवन फॉर द ह्यूमन बींग्स। लेकिन कैट आपने रखी है तो सबसे ज़्यादा वो उनको ग्रूमिंग ज़रूर करते रहें। शेडिंग होता है, वो कैट अपने आप को भी खुद साफ़ करती है, तो जब साफ़ करते हैं तो बहुत से हेयर वो अपने इंजेस्ट कर लेते हैं। जब वो खा जाते हैं तो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो फिर वो खाना बंद करेंगे, फिर वो वॉमिट करने लगते हैं, किसी किसी टाइम तो हमें सर्जरी करना पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखें, आप रेगुलर ग्रूम अगर करते हैं और उसको रेगुलर वैक्सीनेशन अगर आप कराते हैं, और कैट को कभी भी केज में मत रखिए, दे आर इंडिपेंडेंट एनिमल। वैसे भी किसी एनिमल को केज में नहीं रखना चाहिए, दिस इज़ क्रुएल्टी टू द एनिमल। तो अगर आपने कैट रखा है और उसको स्टरलाइज करवा दीजिए तो घर से बाहर नहीं जाएगी। जैसे डॉग्स एक परमानेंट पेट इनसाइड द हाउस होते हैं, ऐसे कैट्स नहीं होती हैं, बिकॉज जब वो वेन एवर दे कम ऑन देयर साइकिल दे ट्राई टू रन अवे, थोड़ा वाइल्ड इंस्टिंक्ट रहता है। तो कैट को अगर आपने रखा है तो उसको स्टरलाइज करवा के रखें, न्यूटर कर दें, तो वो घर से बाहर नहीं जाती, और बाहर जाएंगी तो इन्फेक्शन नहीं लेके आएंगी। तो आई थिंक आप 5 साल से रखा है तो मुझे लगता है अगले 10 साल और आपके साथ रहने वाली।
0: जी, आगे बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, अपना नाम बताएं सर।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति सर, नाम बताएं अपना।
2: जी, गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी गौतम जी, क्या सवाल है आपका?
2: हाँ, मेरा कहना है कि हमारे भी ग्रामीण क्षेत्र में जब कुत्ता काटता है तो रेबीज इंजेक्शन लगाते हैं, तो कुछ लोग एक ही इंजेक्शन लगवाते हैं, बाकी के इंजेक्शन नहीं लगवाते।
0: जी,
2: तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है? क्या हमें पूरे इंजेक्शन, एक इंजेक्शन से प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है? कृपया विस्तार से बताएं।
0: जी
3: जी गौतम जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका और सभी की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है। पहली चीज़ तो ये कि जैसा डॉक्टर शर्मा ने पहले ही बताया था कि यदि कभी भी कोई भी जानवर, पालतू जानवर, यदि वैक्सीनेटेड है तो कोई बात नहीं, यदि अनवैक्सीनेटेड, जिसको टीकाकरण नहीं किया हुआ, या कोई जंगली जानवर ने किसी को काटा है, तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि उसको, हम लोग उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक में तो ये कि अगर उसको कहीं स्किन में जरा सा कहीं स्किन इंटैक्ट है, उसमें स्किन में कहीं कोई ज़्यादा कुछ नहीं आया, चाट लिया कुत्ते ने या किसी ने भी। दूसरा है कि कहीं स्किन में कहीं ना कहीं वो खरोंच आ गई, और तीसरा कहीं उसने अच्छी तरह से नोच लिया है आपके मांस को। तो तीनों में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग तरह से इलाज है उसके अंदर। सबसे पहली चीज़, यदि कहीं ना कहीं अगर स्किन यदि छिल गई है या कहीं घाव आ गया है, तो उसको 15 मिनट तक साबुन से और तेज रनिंग वाटर में पानी से उसको धोएं अच्छी तरह से, जैसे डॉक्टर ने बताया था। उसका फ़ायदा क्या है कि क्योंकि जो कीटाणु होता है, रेबीज़ का कीटाणु जो होता है, उसके अंदर एक साबुन से यदि उसको करते हैं तो उसको कहीं ना कहीं वो इनएक्टिव हो जाता है। तो 15 मिनट तक लगातार उसको धोएं अच्छी तरह से, और उसके बाद में यदि तुरंत कहीं पास के नज़दीक का अस्पताल जहाँ पर टीकाकरण होता है, तो टीके उसमें 2 तरह के लगते हैं। एक होता है जो कि खाल में लगाया जाता है, इंटरडर्मल इंजेक्शन बोलते हैं, एक होता है जिसको मास्क के अंदर लगाया जाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा डॉक्टर जो वहाँ पर आपके एंटी रेबीज क्लिनिक है, वहाँ पर कौन सी तरह का लगाया जा रहा है। तो उसमें जो खाल के अंदर टीका लगाया तो 4 टीके लगते हैं, और जो मगर इंटरमस्कुलर इंजेक्शन लगता है वो 5 टीके लगते हैं। तो ये एक टीका कभी नहीं, वो डॉक्टर्स जो एंटी रेबीज क्लिनिक जो भी आपके नज़दीक में है, तो वहाँ जाके जो भी डॉक्टर वहाँ पर है, ये जो उस क्लिनिक में लोग हैं, तो वहाँ पर एक टीका कभी नहीं, एक टीके से कभी कुछ नहीं काम चलता। वो एक टीका यदि उसमें 2 तरह का, एक तो होता है वैक्सीन, दूसरा होता है सीरम। सीरम ये तब लगाया जाता है जबकि खाल अगर छिल जाए और उसमें कहीं इन्फेक्शन होने के, वो ताकि उसके अंदर एंटीबॉडी, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि सीधे उस घाव में लगा दी जाती हैं।
0: जी,
3: तो वो दोनों जरूरी हैं। तो इसलिए मगर कहीं ना कहीं आप रेबीज क्लिनिक, एंटी रेबीज क्लिनिक में जाकर जहाँ कुत्ता काटे का इलाज होता है, वहाँ पर जाकर सरकारी उसमें जाके अपना इलाज कराएं। जी
0: डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। जोया जी का मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमारे पास मैसेज आया हुआ है, लिख रही हैं कि डॉग्स लवर जो होते हैं अक्सर बेड पर रखते हैं अपने डॉग्स को, साथ में सोते हैं, उठते हैं और उनके आसपास हमेशा रहते हैं, साथ साथ कभी कभी मुंह भी चाट लेते हैं, तो इस तरीके की जो आदत है, क्या कहीं ना कहीं मुसीबत का विषय है?
1: देखिए, डॉग के सलाइवा में अगर कितना भी वो

0: जिन्हें आप रखें तो थोड़ा इन्फेक्शन तो रहता है, जैसे सालमोनेला या स्यूडोमोनास ऐसे बैक्टीरियाज रहते हैं, अगर वो आपने उसने लिक कर लिया तो आपने ध्यान नहीं दिया या वॉश नहीं किया तो वो एक इन्फेक्शन दे सकते हैं। बट थोड़ा डिस्करेज करें अगर इफ़ ही इज़ लिकिंग योर फेस एंड तो जस्ट गो एंड वॉश, वो एक अफेक्शन का जेस्चर तो ज़रूर है लेकिन अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप यू हैव टू बी केयरफुल, जस्ट वॉश इट विद गुड सोप आफ्टर दिस जेस्चर।
1: जी, आलोका जी का नोएडा से सवाल है। इन्होंने लिखा है इनके पास रैबिट है और उसकी देखभाल ये कैसे करें कि कहीं कोई दिक्कत उनको ना आए।
0: देखिए रैबिट हमेशा पेयर में रखना चाहिए क्योंकि वो खुश रहते हैं, अगर आपने रखा है वो इतनी इंटरेक्शन नहीं है तो वो ज़्यादा खाते रहते हैं, मोटे हो जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं। तो अगर आप उसको पेयर में रखेंगे तो खेलेंगे, उसको कभी केज में मत रखिए, घर में खेलने दीजिए, और ऐसी कोई भी पेस्ट इंसेक्टिसाइड कोई स्प्रे ना करें घर में जहाँ रहते हैं, उनको अच्छा खाना खिलाएं तो वो भी रेसिप्रोक्रेट करते हैं, दे आल्सो वो गिव अनकंडीशनल लव टू यू, वो आपको एक अच्छा कंपेनियन भी रहते हैं। और उसका ध्यान अगर अच्छा खाना खा रहा है और आपने वेटनरी डॉक्टर को बीच बीच में दिखाते रहें फॉर एनी स्किन प्रॉब्लम और एनी डेफिशिएंसी, तो आई थिंक दे लिव लॉन्गर।
2: मगर मैं इस एक चीज़ उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अधिकतर जैसे जो पालतू रैबिट हुआ है, कुछ भी हुआ, कैट भी हुआ, एक चीज़ बहुत मैंने अधिकतर घरों में देखा है वो जगह जगह पॉटी कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं सफाई का ध्यान जरूर रखें,
0: बिल्कुल
1: जी।
2: जो भी वो कहीं इस तरह कुछ भी अगर अपना मल मूत्र विसर्जन कर रहे हैं कहीं से जगह पे ना करें, अगर करते हुए तुरंत।
0: जनरली कैट के लिए वी रिकमेंड कैट लिटर बॉक्स होता है, तो वो कैट इतनी ट्रेंड हो जाते हैं कि वहीं जाके करते हैं।
2: रैबिट
0: इवन रैबिट भी अगर उनको एक ऐसा जगह बना दें, आप उसी ऐसे मैट हैं उसमें उसका यूरिन जहाँ लाइक न्यूज़पेपर बिछा दें तो अगर वो सोक कर लेता है थोड़ी देर बाद वो हील जस्ट गो देयर एंड हील पास टूल देयर, तो ऐसे रैबिट्स भी ट्रेंड हो, इवन द बर्ड्स दे गेट ट्रेंड, उनके लिए ऐसी ऐसी जगह बनाई हुई है नीचे वो पॉट रख देते हैं, वो वहीं जाके अपनी ड्रॉपिंग करते हैं, तो
2: तो ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है साथ
0: ट्रेनिंग की
2: में,
0: भी
2: ट्रेनिंग की
0: आवश्यकता
2: आवश्यकता
0: साथ
2: पालतू
0: साथ,
2: जानवर। जी
0: हाइजीन तो
2: जी
0: मेंटेन करना
2: जी
0: ही
2: जी
0: है।
1: मनीषा जी का हमारे पास मैसेज आया हुआ है, रांची से ही लिख रही हैं कि ये 75 ईयर्स ओल्ड हैं और बता रही हैं कि इनके पास एक बिल्ली है और इनको बुखार हुआ, उसके बाद उसको फीवर हो गया है, तो ये चाहती हैं कि उसको कैसे बचाया जाए, वो ज़्यादा दिक्कत में है इस समय।
0: देयर आर सम वायरल इन्फेक्शन जो ह्यूमन से अपने कैट्स को भी होती हैं या डॉग्स को भी होती हैं, अगर बेस्ट यही है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, हाइजीन मेंटेन करके रखें और कैट को जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो देते रहें, जो उसकी इम्यूनिटी बिल्डअप रहे, तो ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज़ जल्दी होगी नहीं, बट जो वायरस है कई बार म्यूटेट कर जाता है फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर स्पीसीज।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो हमने समस्याओं का समाधान जान लिया, मैं जानना चाहूँगी कि पशु चिकित्सकों का वन हेल्थ में क्या योगदान हो सकता है।
0: देखिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जैसे मेडिकोज हैं दे हैव देयर ओन इशू, पर वेटनेरियंस दे नो वेरी क्लोज टू द एनिमल्स विच डिजीज दे आर स्प्रेडिंग और कहाँ ऐसे कोई बहुत ज़्यादा कोई बीमारी फैल रही है, तो उसमें जैसे कोरोना था तो कोरोना के साथ मेडिकोज के साथ मिलके वी कैन क्रिएट ए गुड वैक्सीन फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, इवन डॉग्स के साथ लाइक उनके लिए वैक्सीन बना सकते हैं, और बाकी जैसे डॉक्टर साहब ने बोला एनवायरमेंटलिस्ट भी इसमें होने चाहिए, तो ऐसे एक इंटेग्रेटेड अगर हम लोग काम करें तो मुझे लगता है बहुत जल्दी एक डिजीज़ को हम कंट्रोल कर
1: कंट्रोल
0: सकते
1: कर
0: हैं।
1: सकते हैं। जी हाँ, हमारे कॉलर लाइन पर हैं, जान लेते हैं कौन है और आपका सवाल क्या है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हेलो, नमस्कार सर, डॉक्टर साहब आपको भी, आपको भी
1: जी
2: नमस्कार।
1: सर नाम बताएं अपना।
3: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है सर, मेरे को एक बार ये स्ट्रीट डॉग ने काट लिया था उसको हाथ पे, तो पहले तो कई हॉस्पिटल गए, वो बोले ये इंजेक्शन हमारे पास नहीं होता, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे ही मिलेगा
1: जी,
3: तो फिर वो क्या क्या इवन तो वो फिर जो अभी जुगल किशोर जी जो सफदरजंग के बड़े हैं उन्होंने बोला है जो काटा हुआ डॉग का उसको टाके नहीं लगाने, तो मैं राम मनोहर लोहिया गया तो उन्होंने टाके लगा दिए थे इसमें, तो वो जुगल किशोर जी भी आए थे एक बार आपके शो में
1: जी, तो क्या जानना क्या चाहते हैं, मतलब ये जो टाके आपको लगाए गए हैं वो हार्मफुल तो नहीं है ये जानना चाहते हैं आप।
3: हाँ ये वहाँ तो उसमें कभी कभी हो जाता है, वो कहते हो इसका कोई एंटी इंफेक्शन इंजेक्शन आता है महंगा है वो पड़े आपको
1: जी।
0: देखिए वो अगर बाइट बहुत ज़्यादा है और ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो कई बार डॉक्टर्स वहाँ रिकमेंड करते हैं, पर 99.9% उसको बंद नहीं करना।

0: चाहिए जो भी रेबिट जहाँ कोई भी डॉग बाइट है, बिकॉज उसको 2 या 3 4 दिन के लिए खुला रखना, और उसको आप जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 15 मिनट सोप से क्लीन करते रहें, रनिंग वाटर में करें, और इम्यूनोग्लोबुलिन आते हैं जो थोड़ा आपको बोला होगा एक्सपेंसिव है, वो जहाँ जख्म होता है उसके अंदर वो वैक्सीन लगाते हैं, एक नॉर्मल वैक्सीन लगाते हैं 0 डे 3rd डे 7th या 4 या 5 इंजेक्शन, वो डॉक्टर का डिस्क्रिशन होता है, वो बाइट कहाँ पे है और कितना डीप है वो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं। लेकिन स्टिच नहीं लगाना चाहिए, मे बी उस टाइम डॉक्टर साहब ने देखा होगा और ब्लीडिंग नहीं रुक रहा हो तो इसलिए स्टिच लगाया होगा।
1: जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप भी?
2: नहीं,
1: अच्छा
2: प्लीज़।
1: सर आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह से आज हम चर्चा कर रहे हैं सभी समझ पा रहे हैं कि आज हम अपने भी सुरक्षा के लिए बातें कर रहे हैं। पशु पक्षियों से प्रेम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपनी भी सुरक्षा ज़रूरी है, और कैसे अवेयर आप रह सकते हैं अपने बारे में, इस बारे में हमारे दो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। डॉक्टर साहब, पशु पक्षी पालकों और किसानों को जूनोटिक रोगों से बचाव के लिए कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए?
2: जैसा मैंने बताया कि नियमित टीकाकरण बहुत ज़रूरी है पशुओं के लिए भी, आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें पूरी तरह से, लोगों को जागरूक बनाएं, यदि कहीं भी पशुओं में कोई भी बीमारी यदि आपको लग रहा है असाधारण बीमारी हो रही है, जो कि आपको लग रहा है कि जो उनको पहले कभी नहीं होती थी, या मनुष्य में भी कोई ऐसी बीमारी हो जो कि लग रहा है कि पहले कभी नहीं हुई थी, ऐसे कोई नई लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो तुरंत के तुरंत नज़दीक के अस्पताल में जाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो आजकल नई नई बीमारी हो रही हैं तो उसमें तुरंत इसका निदान हो सके, ये आपको थोड़ा अपने तरफ से कोशिश करनी है।
1: जी, हमें खुद जागरूक रहना होगा, ये डॉक्टर साहब लगातार हमें बता रहे हैं। फिलहाल अब यहाँ रुकते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के लिए, बाकी बातें इसके बाद।

0: श्रोताओ, वर्ल्ड जूनोसिस डे पर आज हम विशेष चर्चा कर रहे हैं। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। स्टूडियो के नंबर हैं 0112342 1080 और 0112342 1082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, जो कि लगातार आपके आ रहे हैं 9868107070 पर। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है कि सरकार द्वारा जूनोटिक रोगों की रोकथाम के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?
1: जी, हमारे देश के अंदर जूनोटिक डिजीज़ के रोकथाम के लिए बहुत सारे प्रोग्राम अलग अलग रूप से चल रहे हैं। जैसे एक समस्या मुख्य रूप से समस्या थी रेबीज़, तो राष्ट्रीय रेबीज़ कंट्रोल प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत समय से चल रहा है। और जैसे मैंने बताया 2022 से नेशनल वन हेल्थ पॉलिसी, इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच तीनों एनवायरमेंट हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ प्लस एनिमल हेल्थ तीनों के ऊपर चल रही है। देन एक है इंटीग्रेटेड IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम। इसके अलावा विभिन्न पशुपालन मंत्रालय के अंदर भी पशुओं के लिए विभिन्न प्रकार के टीकाकरण कार्यक्रम चल रहे हैं। इससे पहले कि आपका प्रश्न था पशु पक्षी और पालकों या किसानों को रोकथाम के लिए क्या क्या जरूरी है, इसमें कहीं कहीं उसमें एक और चीज़ है कि जो जितने किसान या जो पशुओं के साथ में देखभाल जो या डेयरी फार्मिंग में जो लोग काम करते हैं, कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग करें, तो क्योंकि जो डस्ट वहाँ से निकलती है वो जो मृत पशु हैं उनको सही तरह से कैसे निपटाएं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उसमें और नियमित टीकाकरण जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी, तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं। जी,
0: बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे आसपास घटनाएं होती हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उसमें भी पशु देखा जाता है कि सड़क पर बहुत बुरी तरह से पड़े हुए होते हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम चेन हैं, एक और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सवाल और है डॉक्टर साहब आपसे मेरा कि बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और अन्य उभरती हुई जूनोटिक बीमारियों पर वर्तमान स्थिति क्या है इस समय?
1: देखिए, ये तीनों चीज़ें जो हैं बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और जितनी जूनोटिक बीमारियाँ आजकल जब भी होती हैं तो नई बीमारियाँ होती है, अधिकतर आउटब्रेक के रूप में होती है, मतलब अचानक से उभर के कई सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो समय समय पर आउटब्रेक के रूप में सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं नियमित निगरानी, पोल्ट्री फार्म जो आपके मुर्गा पालन या पोल्ट्री फार्म जो होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बायोसिक्योरिटी और रैपिड एक्शन एक्टिविटी कहीं ना कहीं उसके कंट्रोल में बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उनको ही मास्क पहन के या कहीं अपने दस्ताने वगैरह पहन के उसको प्रयोग करें, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जगह जो जगह हैं बर्ड फ्लू वगैरह इन सब ऐसी जगहों पर काफ़ी अचानक से बहुत जल्दी आउटब्रेक होता है इस तरह की बीमारी में।
0: जी, हमारे पास मैसेज आया हुआ है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, इन्होंने सवाल किया है कि पिजन्स के अलावा क्या अन्य जो बर्ड्स हैं उनसे भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है?
2: या उनका ड्रॉपिंग से

0: हो सकता है, तो इसलिए अगर आप हाइजीन रखेंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ज़्यादा छोटे एरिया में ज़्यादा बर्ड नहीं रखें, वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए। तो
1: जी
0: आप पैरट्स जो भी जो रिकमेंड हमारे कंट्री में अलाउड हैं वो रखें, एग्जॉटिक एनिमल्स रख सकते हैं, पर जो हमारे इंडियन पैरट्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू कीप एज ए पेट, तो वो इलीगल है, वो नहीं आप रखें। बाकी आपने जो और एग्जॉटिक एनिमल बर्ड्स रखे हैं तो उनका जो केजेस हैं उनको अच्छी तरह क्लीन करते रहें, उनकी ड्रॉपिंग्स के लिए आजकल नए नए केज आए हैं, वो नीचे ट्रे होता है वो नीचे गिर जाती हैं, उसको आप क्लीन करते रहें। बाकी जितना हाइजीन रखेंगे और आपकी इम्यूनिटी बेटर है तो ऐसी कोई इन्फेक्शन नहीं होती ज़्यादा। और तो आई
1: जी
0: थिंक कीप ऑन लविंग योर बर्ड्स।
1: जी डॉक्टर साहब, जूनेटिक रोगों के बारे में आम जनता में कौन कौन सी भ्रांतियां हैं? क्योंकि सही अगर कोई मशवरा दे तो ठीक है, अदरवाइज कुछ
0: भ्रांतियाँ तो बहुत
1: भ्रांतियां
0: है
1: तो
0: हमारे एक्चुअली हमारा कल्चर ऐसा है कि वी आर वेरी क्लोज टू द एनिमल, हम तो उनकी पूजा भी करते हैं। तो भ्रांत को बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई तो वो उसको ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, तो
1: ओह
0: वो
1: माय
0: लगता
1: गॉड।
0: है अभी मेरे कोई अपशगुन हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता कभी भी, वो एनिमल है, वो जगह उसको भी वो बिलोंग करता है, वो भी कहाँ रोम कर सकता है। लेकिन अगर आपको आपको ऐसे बिल्ली को रास्ता काट गई तो बहुत से लोग क्या करते हैं उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं विदाउट एनी रीज़न। तो एक ये अंधविश्वास है, उसको आप दूर रखें। और कभी डॉग आपको स्क्रैच कर ले तो बहुत से लोग डर जाते हैं कि इससे रेबीज़ हो जाएगी, वैसा रेबीज़ नहीं होती। और अब कौआ बोलने लगे तो बोले घर में कोई गेस्ट आने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड हैं एनिमल्स के
1: जी
0: साथ, बिकॉज हम हमारा सोसाइटी ऐसी है, वी लव एनिमल्स एंड वी शुड कीप ऑन लविंग अप आर एनिमल्स ऑन आउटसाइड एंड इनसाइड द हाउस।
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे पास मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, सवाल सिर्फ लिखा है सर, जो डॉग के काटने से रेबीज होता है उसका 10-15 साल पहले काटा हुआ, मतलब ये जानना चाहते हैं कि अगर 10-15 साल पहले काटा हुआ है तो भी क्या आगे चल के रेबीज हो सकती है?
0: ऐसा कोई रिकॉर्डेड नहीं है, ऐसी कोई रिसर्च नहीं है इसके ऊपर। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे डॉग बाइट को अच्छी तरह आपने एड्रेस कर लिया है, अपने डॉक्टर से बात करके प्रोफाइल जो थेराप्यूटिक डोजेज ले ली हैं, तो मुझे नहीं लगता वो बाद में होता है। लेकिन एक बहम है, मैंने भी बहुत लोगों को सुना है कि मेरे को 10 साल पहले डॉग ने काटा था तो अब तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप आपकी इम्यूनिटी बेटर है और आपने वैक्सीनेशन लगवा लिया था, और एक बात यह है कि हर डॉग बाइट रेबीड बाइट नहीं होती है, तो हर डॉग रेबीड नहीं होता है, तो इसलिए आप डरे नहीं। और एनिमल को इसलिए नहीं मारे डॉग को कि वो रेबीड है, तो रेबीड नहीं होता वो एनिमल, उसकी अपनी सेल्फ इम्यूनिटी भी होती है, वो सदियों से हमारे पास रह रहा है, तो वो उनकी जीन्स जो हैं डीएनए आरएनए उनके बहुत स्टडी होते हैं, दे उनको अगर एक्सपोजर नहीं होता तो दे वोंट गेट रेबीज़। लेकिन अगर आपने ठीक टाइम पे वैक्सीनेशन करवा लिया और ध्यान रखा है और घर के अंदर जो रखा है उसको वैक्सीनेशन करके रखा है, तो आई थिंक यू शुड वरी अबाउट दिस।
1: जी डॉक्टर
0: मैं
1: साहब,
0: इस विषय पर बस एक चीज़ थोड़ा सा करना
1: श्योर
0: चाहता
1: आप
0: हूँ।
1: बताएं।
0: यदि कोई भी एनिमल यदि काटता है, यदि पालतू है, तो कम से कम उसको ऑब्जर्व करें 10 दिन के लिए। यदि घर के बाहर के किसी कुत्ते ने काटा
1: बिल्कुल
0: है आपको, तो उसे 10 दिन के लिए ऑब्जर्व करें, क्योंकि कभी भी जिसके कुत्ते ने काटा है, यदि उसको रेबीज है, तो यूजुअली 7-10 दिन के अंदर वो डॉग की डेथ हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो इसीलिए किसी भी जदि कोई कुत्ता यदि काटता है तो उसको 10 दिन तक ऑब्जर्व करें। यदि वो कुत्ता अगर सड़क वाला कुत्ता है या स्ट्रीट डॉग है, तो उस केस में वैक्सीनेशन कराएं तो अच्छा है, क्योंकि ध्यान रखिए
1: हिस्ट्री
0: रेबीज जो है वो 100% फेटल डिजीज है, तो उसमें रेबीज यदि एक बार हो गई तो फिर ऊपर वाला मालिक है।
1: जी।
0: ठीक है
1: लेकिन श्रोताओं,
0: जी
1: यहाँ पर आपको डराने का उद्देश्य हमारा
0: जी
1: बिल्कुल नहीं है, हम
0: बिल्कुल
1: चाहते हैं कि सिर्फ आप जागरूक रहें, क्योंकि पशु पक्षी हमारे साथ रहें, ये भी एक मनोवैज्ञानिक कारण ये बताया जाता है कि हमारी जो स्ट्रेस होती है वो भी रिलीज होती है जब हम इनके साथ होते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो खुश रहिए उनके साथ और पूरी तरह से सुरक्षित भी कैसे रहें इस बारे में आज हम चर्चा करें। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि पशु चिकित्सक और मानव चिकित्सकों के बीच समन्वय क्यों ज़रूरी है?
0: वो जैसे हमने पहले बताया कि वो इंटेग्रेटेड अप्रोच रहेगा ना, एक टेबल पे सब बैठे हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या कहाँ आउटब्रेक है, कहाँ किस एंगल से आपको उसको कंट्रोल करना है, तो आई थिंक वो इम्प्लीमेंटेशन बहुत फास्ट होगी, वी कैन स्टॉप द आउटब्रेक, और जो आने वाली बीमारी है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। क्योंकि हर ट्रॉपिकल कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट वायरस होते हैं, वो कई बार म्यूटेट करते हैं, तो वो अगर रेगुलर रिसर्च और उसके ऊपर काम होता रहेगा तो वी कैन कीप आवर कम्युनिटी वेरी सेफ।
1: जी डॉक्टर साहब, हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां पर हमें अपना जो चर्चा हम कर रहे हैं उसको विराम देना होगा, तो आप दोनों से चलते

0: चलते संदेश जाना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, इसमें हमने डराया नहीं आपको, लेकिन हमने आपको अवेयर किया है कि ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंसान से डॉग को हो सकती हैं, एनिमल्स को हो सकती हैं, एनिमल से इंसान को हो सकती हैं। तो अगर आप हाइजीन रखें, सफाई रखें, अपने आसपास घरों में सफाई रखेंगे, तो आई थिंक ये बीमारियां नहीं होगी। थोड़ा अवेयर रहेंगे तो थोड़ी इनिशियल स्टेज में ही आप उसको पकड़ सकेंगे। तो हमेशा अवेयर रहिए।
0: जी
2: मेरी तरफ से संदेश ये है कि विश्व जूनोसिस दिवस पे कि जानवरों से प्यार करें, लेकिन
0: बिल्कुल
2: सावधानी बरतें।
0: जी
2: तो पालतू जानवरों को जो अगर ये आपके पास में है, तो उनका टीकाकरण अवश्य कराएं, स्वच्छता रखें, जानवरों के पास भी, अपने आसपास भी। किसी भी असामान्य बीमारी की सूचना अवश्य दें। जागरूकता तो स्कूलों, गाँवों, सोशल मीडिया के जरिए फैलाएं जितना हो सके। जो भी यदि दूध पिए तो उसको हमेशा उबाल कर पिए, कच्चा मांस नहीं खाएं, पुराना मांस नहीं खाएं। तो ये सब चीज़ों थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सफाई का सब चीज़ों ध्यान रखेंगे
1: लेकिन
2: जी।
1: इंसान को भी अगर प्यार करें तो मुझे सावधान रहें।
0: जी आपने जागरूक किया, और श्रोताओं आपको बता दें कि वर्ल्ड जूनोसिस डे पर आज हमने विशेष चर्चा की है। उम्मीद आपको पसंद आई होगी, और आपके मैसेजेस बता रहे हैं कि आप बहुत गौर से प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आप इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहें और लाभान्वित होते रहें। अब से चलते चलते बस इतना कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि आज हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद थे। आप थे डॉक्टर एस के रसानिया जी, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, और डॉक्टर आर टी शर्मा जी, वेटिनरी डॉक्टर न्यू दिल्ली। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की।
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद एक मौका देने के लिए, लोगों के साथ में एक इंटरेक्शन के लिए।
1: थैंक यू
0: जी, शुक्रिया।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: बड़ा गुनगुनाइए जी।
1: हाँ जी, हाँ जी, अच्छा पूरी तैयारी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, गुनगुनाओ। हाँ,
0: ये वाली
1: अच्छा हो गया, खत्म हो गया गाना। हाँ, मेरे को
0: हाँ
1: गैस नहीं होया ऐसी चंगी तरीके नाल।
0: जी, टिंग टिंग लक लक, टिंग टिंग लक लक,
1: एक ही हो गया गीत दे विच, टिंग टिंग लग लग आ गई है।
0: ते मेरा सारा सभ्याचार बड़ा लाता ही पौक विच।
1: हां, सभ्याचार तुसी नाल जोड़ जोड़ के रख रहे हो अपने।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: ठीक है जी, गुनगुनाया तुसी जरूर है, मैनू इदा लगदा कि तुसी मुंह खोल के गुनगुनाया।
0: नहीं, मैं तो बात करके मंगाया था।
1: देखो बंद करके दी आवाज थोड़ी लग आंदी है, खोले ते थोड़ी लग आंदी है।
0: मैडम तो जिस तरह एक नुगाया ने कभी सॉन्ग गा लेती हैगी है, एक और गा के सुना दे मैडम, सही
1: केड़ा?
0: सॉन्ग जरा मैडम लवाना जरा जी।
1: अच्छा, गा के भी सुना सकते हो जी। ते ठीक है जी।
0: अब यही अफसाने,
1: हाँ, पीछे देख लो,
0: हर
1: बैकग्राउंड म्यूजिक भी
0: तरफ
1: बज रहा
0: अब यही।

0: ठीक है जी, ठीक है जी, पता चल गया जी, तुसी इत्थे प्रोग्राम विच हैगे हो ते तुसी अपना अफसाना भी सुनाता सानू जी। जी जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी,
1: थैंक यू सो मच मैम,
0: थैंक यू जी, थैंक यू जी। लो जी, इन्हां ने साडे नाल गलबात कीती है ते हो गया जी, इन्हां ने भी गुनगुना के भी दस दिता सीगा। इसे तरीके दे नाल तुसी भी अपनी फरमाइशां नूं पूरा करना है जी, बस गुनगुना के मैनूं दसना है किहड़ा गीत है किहड़ा नहीं है। इन्हां ने गीत दी फरमाइश कीती सी, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, मन्ना डे दी आवाज़ दे विच गीत सीगा। तो इह तां अपने इस टास्क पास हो गए ने, देखांगे अगले कॉलर अपने टास्क पास हुंदे है कि नहीं हुंदे। सो अगले कॉलर वल भी आपां जावांगे, नंबर मैं अनाउंस कर देनी हां जी, जिहड़े हुणी साडे प्रोग्राम दे नाल जुड़े ने, ओह वी 0181-43-174 नंबर ते साडे नाल जुड़ सकदे, सानू कॉल कर सकदे है। 0181-234-2174 ये साडा नंबर है जी, इस नंबर दे नाल तुसी सानू कॉल करके अपनी गीतां दी फरमाइश कर सकदे हो। जस्ट की करना है तुसी, बस गुनगुनाना ही है, कुछ ज़्यादा औखा काम नहीं है, गुनगुना के मैनू दसना है। वह तो तुसी नॉर्मल हर दिन करते ही रहते हो गए ना। सो लो जी, गाना सुनते हैं जी असी, हर तरफ अब यही अफसाने हैं, और चलते हैं बाद चो अगले कॉलर वाल।
2: अब

0: जी हाँ, हर तरफ बस यही गल है कि अज दे गीत नूं किद्दां पूरा कीता जाए गुनगुना के। ते बस जी, अगले कॉलर दे नाल जुड़दे हां, देखदे हां टास्क पूरा कर पांदे कि नहीं कर पांदे। हैलो
1: हेलो,
0: हेलो, हाँ जी नमस्कार, सत श्रीकाल जी,
1: मैम।
0: कौन गल कर रहा जी?
1: मैडम पवन कुमार, पिंड पंजाब, जिला होशियारपुर जी।
0: जी पवन जी, प्रोग्राम च पहले तो बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा जी। हैलो, आवाज़ आ रही
1: हाँ
0: है?
1: जी, हाँ जी,
0: हाँ जी,
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: मैनू इदा लग रहा तुसी कितने खोए खोए हो।
1: नहीं नहीं मैम,
0: अच्छा ठीक है। अच्छा, गीत केड़ा जेड़ा सुनना चाहते हो ना तुसी, आज ओदी फरमाइश पूरी होएगी। तुहानू पता ही है रूल की है कि गुनगुना के सुनाना पड़ेगा। तो
1: ठीक
0: जिहड़ी फरमाइश तुसी कीती है ना गीत दी, हुण उहनू गुनगुना के सुना दो ताकि मैं गैस कर सकां केड़ा सोंग है।
1: है जी।
0: जी
1: कौन
0: बस खत्म।
1: थोड़ा ही
0: हाँ, ये तो एक लाइन भी नहीं सी। हाँ
1: सही गल, दोबारा रिपीट कर दो।
0: जी, ये तो मैं तो कोई बच्चा भी नहीं गैस कर सकता। ये तो मैनू लगता तुसी नाल किसी बैठे भी सुना दो कि वो भी नहीं गैस कर सकता तुसी की सुना देता है। इदा लग रहा सी एक मच्छर मेरे कंध को कर रहा है। चलो कोई गल नहीं जी, ट्राई करना चाहते तो कर सकते हो। जो तुम गीत नहीं आता तो कोई गल नहीं है जी। गीत फिर मैं हूँ मतलब थोड़ा रहन देव, कोई होर लगा देव।
1: हाँ जी, ला दी।
0: ला दे, वो दुखी क्यों हो गए तुसी?
1: हाँ जी,
0: मैं कह दुखी ना वो लगा दें गीत एक बारी। गीत जी फरमाइश हो तुसी दस दो।
1: केंद्रीय रोका जान दे सज्जना ना।
0: अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, असं तुहानू नहीं रोकते, तुसी जा सकते हो। ठीक
1: ठीक है जी,
0: है, ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच कॉल करने वास्ते जी,
1: ओके,
0: ओके
1: थैंक
0: जी। चलो जी, प्रोग्राम के बीच मैनू लगता टास्क थोड़ा ज़्यादा औखा हो गया कि गुनगुना भी नहीं हो रहा, और जिहड़े सिगे कईयां ने गुनगुना भी दिता, मैनू लगता एक कॉलर ने गुनगुनाया, बाकी तो नहीं गुनगुना पा रहे। सो जिहड़ा गीत तुसी सुनना चाहते हो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस कर लो और उन गुनगुना के मैनू दसो ताकि मैं गीत प्ले कर सकाँ। इदा ना हो कि अगले कॉलर का फिर मैं गीत ना प्ले कराँ और फिर मैं अपनी मनपसंद का प्ले कर लूँगी, फिर बाद चो ना कहीं फोन भी लगा तो फरमाइश पूरी नहीं हुई है। ठीक है जी, नंबर है 0181-4342-174, यह साडा नंबर है जी। इस नंबर पर सानू कॉल करके अपनी फरमाइश

0: अरे वाह वाह, क्या बात है जी। एक मिनट रुको, लो तालियां बजा लां तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुत ही तुसी गुनगुनाया है जी। थैंक यू जी, बहुत सोहना तुसी गुनगुनाया और मैनू पता भी चल गया गाना है जी। आंखों में कयामत का काजल जी, बहुत सोहना गीत, बहुत वधिया। अच्छा, पहला तो प्रैक्टिस कर रहे थे कि तुहानू हुणी हुणी तुसी प्रैक्टिस कीती है या हुणी गुनगुनाया?
1: हुणे हुणे कीती जी, जदों तुसीं कहा वी हूं करके गाउणा गा, तां
0: हाँ
1: मैं
0: हाँ
1: कहा चलो कोई गल नहीं,
0: अच्छा
1: छोटे हुंदे वी इदां करदे रहिंदे हुंदे सीगे।
0: हाँ, ये तो है। ताई तो मैं क्या सौखा जड़ा टास्क सीगा, पता नहीं क्यों बाकी कॉलर्स ना जो औखा लग गया।
1: मैनूं तां जे तुसीं 10 गीतां दा कहदे, मैं 10 गीत कहड़ा ना सुना दें
0: अच्छा, क्या बात है, मैनूं लगदा तुसी सिंगर तो नहीं रह गए कितने, जे सिंगर हो।
1: सिंगर तां नहीं, हूं करन वाले हैंगे जी।
0: अच्छा, करने वाले तुसी जरूर है क्यों जी, बहुत वधिया।

बस हो गया। हेलो, ओहो, मैनू लगता साड़ी पिछों लाइन जिहड़ी है कट्टी गई है, ते इस चीज़ नू लैके मैं थोड़ी माफ़ी चाहनी हाँ जी। ते गाना सानू पता लग गया सी पोल जी, तुसी केड़ा गया सी, बहार फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, गीत बड़ा कॉमन हो चुका है। ते बड़े चलाक सारे कॉलर साडे नाल बंदे है, क्योंकि उन्होंने पता है केड़ा गीत गुनगुना सकते, तो फटाफट वही वाला गीत गुनगुना के सुना भी देंदे है। सो बड़ा चंगा लग्या जी, अज साडे प्रोग्राम दे विच तुसी वक्रे वक्रे गीत की फरमाइश की है जी, अलग अलग टोना दे नाल, मतलब तुहाडे अंदर अज टैलेंट जिहड़ा निकल के बाहर आया किस तरीके दे नाल करना। मैनू लगता हुण बहुत सारे कॉलरस बैठ के दी प्रैक्टिस ही करते होने हैं कि बैठ। चलो जी, अज का प्रोग्राम फिलहाल जो समा है तो समाप्त हो चुके हैं, और समय के नाल हूँ मैं तुहाडे तों इजाजत लैनी हाँ जी। सारे तो दिलों थैंक यू है जी, साढ़े नाल दो ऐसे कॉलर जुड़े से, जगदीश जी ते रविंदर जी, जिन्होंने बहुत अच्छा गुनगुनाया सी, उन्होंने लिए क्लैपिंग हो जाती है फिलहाल तो, और उन्होंने तारीफ भी है। हूँ मैं तुम्हें दस दाँ कि अगला प्रोग्राम युवाणी है जी, साढ़े जिहड़े आर जे दोस्त इस प्रोग्राम को पेश करनगे। युवाणी दोस्त युवा दोस्तों का मनपसंद प्रोग्राम है जी, उन्होंने प्रोग्राम भी जरूर सुन के जाइए। इस नाल हूँ अपनी दोस्त आर जे सुरबीन तुम इजाजत दो जी, अगले प्रोग्राम यानी पूरे 6 बजे फिर मिलेंगे जी मैं प्रोग्राम लैके। लव यू जिंदगी फिलहाल दे लई, ओके बाय बाय, टाटा ते नाल दी नाल टेक केयर है जी।

0: नींद।
1: बिल्कुल यही है। इस दिन नू जिहड़ा मनाउण दा मकसद है ना, वह भी यही है कि शहरां ते पिंडां दे विचकार जिहड़ा एक वड्डा पाड़ है उहनू मिटाया जा सके ते पिंडां तक साफ पानी, सिहत सहूलतां, इंटरनेट ते वधिया सिक्ख्या पहुँचाई जा सके।
0: तो फिर दोस्तों याद रखो कि मजबूत पिंड ते मजबूत भारत, ये दोनों चीज़ां जुड़ियां हुई ने। जदों पिंड खुशहाल होणगे उदों ही देश की तरक्की होएगी, तो मैनूं लगता
1: बिल्कुल।
0: है होर तेज़ होएगी।
1: सानू अपने पिंडां दा सतिकार जरूर करना चाहिए क्योंकि कई युवा पीढ़ी दे नौजवान इदां दे ने जो कहिंदे ने कि मैं पिंड तों हाँ, मैं शहर जाणा है ना, तां इह चीज़ साडे अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपनी मिट्टी दे विच मेहनत दा बीज बीजो, इत्थे भी कामयाबी दीआं जिहड़ीआं फसलां ने उह लहरा सकदीआं ने।
0: तो मैनूं लगता है इसका सब तो सफल एग्जाम्पल साडे कोल है जी बाबू जगजीवन राम जी। तो दोस्तों तुहानूं दस दईए कि अज असीं उन्हां नूं याद कर रहे हैं, वह एक महान नेता भी ने, समाज सुधारक भी ने, तो लोगों के अधिकारां लई जीवन भर संघर्ष करन लई बाबू जगजीवन राम जी नूं जानिया जांदा है
1: बिल्कुल। अज उन्हां दा जिहड़ा डेथ एनिवर्सरी है
0: जी।
1: तां एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे ते भारत विच उन्हां ने हरी क्रांति दी नींह रखी सी। जदों देश अन्न दे संकट विचों गुजर रहा सी तां उन्हां ने सख्त फैसलियां ते दूरअंदेशी ने साडे पिंडां ते किसानां नूं इन्ना मजबूत कर दित्ता कि भारत अन्न दे मामले दे विच आत्म निर्भर बन गया।
0: दोस्तों उन्हां दी जिंदगी सानू यह सिखाउंदी है कि मेहनत, हिम्मत ते दृढ़ इरादे नाल हर रुकावट नू पार कीता जा सकदा। दोस्तों समाजिक न्याय, समानता ते मनुखी अधिकारां लई उन्हां दा संघर्ष अज भी साडे लई प्रेरणा दा स्रोत है।
1: बिल्कुल। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दबे लोगों के हकों के लिए खिलाई है। अज के नौजवानों भी यही असी कहना चाहवांगे कि कई बार असी बहुत छोटे हालातों तो परेशान होकर बैठ जाने हैं, पर उन्होंने जीवन में देखो जिन्होंने जीरो तो शुरू करके देश के सिखर तक अपना सफर तय किया है।
0: तो फिर पिंड की आवाज़ सुन के, पिंड की गल सुन के ओल्ड स्कूल वाइब्स ना लिया करो। ये पिंड भी साढ़े सभ्याचार का एक बहुत ही गूढ़ा हिस्सा है।

0: जी बिल्कुल सही क्या, दुनिया तो सोनी मेरी पिंड दी सवेर है। जी दोस्तों पिंड दी गल हो रही है तो फिर पिंडा चो एक शब्द तुहाडे लई लैके आए हैं जी खास सैगमेंट वर्ड एक्सप्रेस दे विच जी।
1: हाँ जी दोस्तों तुसीं सुन रहे प्रोग्राम युवाणी अपने आरजे दोस्त हटनीत
0: ते आरजे शिवम दे नाल।
1: बिल्कुल ते साडा सैगमेंट शुरू हो चुक्या है जी वर्ड एक्सप्रेस ते अज असीं तुहाडे लई एक शब्द लैके आए हैं अपनी मिट्टी दी महक अपनी बोली दा एक अजिहा मोती जिन्हों सुन के शायद साढ़े बजुर्गों की अखों के एक चमक आएगी तो नवी पीढ़ी सोचों के पै जाएगी। पर उतो पहला एक शायरी दे नाम
0: इरशाद इरशाद
1: पुराने वेलियां दी हर एक चीज सांभी बैठे हैं शिवम गौर फरमाना
0: जी जी
1: पुराने वेलियां दी हर एक चीज सांभी बैठे हैं असी दिल विच यादां दा एक जहान बैठे हैं बदल गए ने भावें अज डिजाइन बर्तना दे बदल गए ने भावें अज डिजाइन बरतना दे पर असी अज भी उस सादगी ते जान वारी बैठे हैं।
0: वाह वाह हरनीत दोस्तों तुहानू याद है जदों दादा दादी या नाना नानी कोलों एक शब्द सुनिया करते सी असी अज दे स्टील ग्लास ते नॉनस्टिक दे जमाने विच शायद ये शब्द तुसी घट सुनिया होवे पर एक समय सी जदों लगभग पंजाब दे हर घर विच कांसी दा छन्ना जरूर हुंदा सी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सो तुहानू पता तो लग ही चुका है अज दा साडा खास शब्द है छन्ना। अजकल दे कच जां प्लास्टिक दे कौलियां दे जमाने दे विच छन्ना जिहड़ा शब्द है ना ओह कितें ना कितें शब्द गुआच गया है तुसीं की कहिंदे हो।
0: बिल्कुल मैनूं लगदा है कि हुण शायद ही सुणदे होईए ते मैनूं लगदा शायद ही अजकल घरां दे विच होवे छन्ना
1: बट की इहनूं तां पता भी नहीं होएगा कि छन्ना हुंदा की है।
0: कोई गल नहीं असीं हैगे तां आ दसण लई मैनूं लगदा है कि अज भी लोकां नूं ना इह शब्द बारे पता होना चाहीदा है क्योंकि छन्ने दा पाणी ठंडा भी हुंदा सी ते स्वाद उहदा वखरा ही हुंदा सी।
1: बिल्कुल बिल्कुल तो ये जड़ा बर्तन है ना जिससे साड़े पंजाबी सभ्याचार ते रसोई दे नाल बहुत ही गूढ़ा ते पवित्र रिश्ता रहा है। दोस्तों एक दौर से जदों पंजाब दे घरां दे विच सवेर दी शुरुआत चाह दे कप्पां दे नाल नहीं बल्कि कांसी दे छन्नियां विच पाए दुध लस्सी ते मक्खन दे नाल हुंदी सी। कांसी दे बर्तनां दे विच जिहड़ा खाणा सिर्फ रिवाज नहीं बल्कि सेहत दा खजाना भी मन्निया जांदा सी।
0: ते हरनीत तू मन्नेगी कि है ना मेरे दादी जी जो सी ना ओह कांसी दे छन्ने दे विच ही मेहमानां नूं लस्सी देना पसंद करदे सी। उन्हां नूं लगदा सी इह चटौर बणदी है पूरी पूरी। ते दोस्तो अज भी जे तुसीं अपने वड्डियां नाल गल करोगे उन्हां नूं जरूर पुछियो कि उन्हां दे घर विच छन्ना हुंदा सी कि नहीं हुंदा सी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तां जिहड़ा इहदा नाम है ना छन्ना इह काफी लोक गीतां दे बोलियां दे विच भी वरत्या जांदा है तुहानूं पता है।
0: नहीं जी
1: दस दिंदे आपां तुहानूं कोई नहीं इह जिहड़ा शब्द है सिर्फ भांडे दा नाम नहीं है साडी अमीर विरासत का भी प्रतीक है। ये सानू याद आता है कि उस दौर की जिथे रिश्तों में कांसी वर्गी मजबूती होंदी सी ते दिलों के कोई खोट नहीं सी होंदी।
0: जी दोस्तों मैनू लगता है कि जदों कांसी की गल हो रही है तो पंजाबी भाषा के पुराने ते अनमोल शब्द साडे सभ्याचार की असली पहचान ने। आओ फिर इन्हों याद ही ना रखिए बल्कि रोजाना गलबात भी इन्हों की वरतों करिए क्यों हरनीत।
1: बिल्कुल बिल्कुल जिमें आप हम गल कर ही रहे छन्ने की ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਮ
0: ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਓ
1: ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ
0: ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ
1: ਲਓ ਜੀ।

बहुत बढ़िया हरनीत, मैंने इशारा कर रही है कि एक लाइन तुसी भी गा दो, पर मैनू पता तुहाडे कन्नां दा ख्याल मैं ही रखना है, मैं नहीं गाऊंगा, तुसी टेंशन ना लो। पर गीत मैनू लगदा है वो असी सुना सकदे हां जी, मेरी आवाज़ च तां नहीं जी, जासमिन सैंडलस दी आवाज़ विच गीत पेश कर रहे हैं, इंजॉय करो ते फिर मिलदे हैं जी अगले सेक्शन।

वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, तो सैगमेंट शुरू हो गया है जी। केड़ा तोड़े सारे फेवरेट जी, केड़ा फिल्मी नंबर वन।

0: जी दोस्तों, फिर सेगमेंट शुरू हो गया है तो फिर सवाल दी लड़ी भी शुरू हो जाएगी।
1: हाँ जी जी शुरू होने जा रही है लड़ी साढ़े क्वेश्चंस की। तो तुसी अपना जो मोबाइल है ना अपने हाथों में फड़ लो ते जल्दी तो जल्दी सानू कॉल करनी है ते साडे नाल गल्लां बातां मारनियां ने,
0: क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। ते जे बारिश हो रही है ते फिर बारिश दे जुड़े सवाल ही असीं तुहाडे लई लैके आवांगे जो बॉलीवुड दे विचों असीं चुन चुन के तुहाडे लई लब्भे आ।
1: बिल्कुल, तो अज साडा होएगा फिल्म नंबर 1 मानसून स्पेशल।
0: ते बस फिर मानसून स्पेशल एंजॉय करोगी जी तुसी साडे नाल, मेरे नाल आज हर आज शिवम थे
1: आज हरनीत दे नाल।
0: इसलिए भी मैं ही बोल देना, हरनीत बोल नहीं रही मेरे नाल।
2: डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
0: जी प्यार तो डरिए ना डरिए सी, हरनीत तो जरूर डर रहे हैं। ते हरनीत मुझे लगता है सवाल लेके हाजिर है जी।
1: हाँ जी, सवाल लेके आप हाजिर जरूर हो गए हैं। तो तुसी सुनो साडा पहला सवाल। सवाल साडा ये है कि श्री 420 दे उस आइकॉनिक रेन सॉन्ग का नाम की है जिदे विच राज कपूर ते नरगिस इकट्ठे नजर आते हैं।
0: जी दोस्तों, तुसी ये गाने का नाम सानू दसना है ते खास करके सानू ये भी दसना है कि इस गाने दे विच जो एक्टर्स ने ओ कौन कौन ने। असी नाम तुहानू दसता है एक्टर्स का, हुणे विच तुसी एक्टर्स भी दसने हैं, नाम भी दसना है ते गाने का हिंट भी तुहानू मिल गया है। हुणे तुसी गाना इंजॉय करो जी मिका सिंह ते कनिका कपूर की आवाज़ दे विच, ते फिर जल्दी जल्दी फोन करके सानू दसो क्योंकि काफ़ी सारे हिंट्स तो मैंने लगता असी दे ही दिते आ। ते बस फिर इंजॉय करो ये ट्रैक ते फिर जल्दी जल्दी कॉल करो। नंबर तुहानू पता है जी 0118-23-4174 ते तुसी
1: सानू फेसबुक मैसेंजर ते भी मैसेज कर सकते हो। जल्दी जल्दी करो।

0: वेलकम बैक दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है युववाणी, सेगमेंट चल रहा है जी फिल्मी नंबर वन। मेरे नाल आरजे शिवम ते
1: आरजे हटनी दे नाल। ते सानू जवाब पहुंच चुके है जी, सानू जवाब आया जी फेसबुक मैसेंजर ते। ते ए गल कर रहे ने जी सूरज सूर्य चौहान, इन्हां ने जिहड़ा आंसर दिता है बिल्कुल सही है, रिमझिम करे सावन फिल्म मंजिल दे विच यूज किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े नाल जुड़न दे लई सूरज जी, ते साढ़े सवाल दा जवाब देण लई
0: जी। दोस्तों हुण अगला सवाल ए है कि टिप टिप बरसा पानी ए केड़ी सुपरहिट फिल्म दा है, ते इस फिल्म विच केड़ी एक्ट्रेस ने बड़ा ही बखूबी नाल डांस कीता है जी। दोस्तों तुसी ये दसना है ते मैनूं लगदा ए तां बहुत ईजी है। इस सवाल दे विच तुहानूं दस दईए कि पिछले सवाल दे विच सानूं सूरज जी दा मैसेज इन्नी जल्दी आया कि उन्होंने विद इन सैकेंड्स मैसेज किया, तो वह सच्ची साढ़े जेनुअनली है जी फिल्मी नंबर वन। तो हूँ ये सवाल का कौन जवाब जल्दी दे पाएगा? ओ स्टूडियोज दे विच कॉल आ गए हैं, तो मैंने लगता हम चकने पैणगे फिर।
1: क्यों नहीं।
0: हैलो जी, कौन बोल रहे हो, कितों गल कर रहे हो?
2: बलजिंदर सिंह बोल रहा, जिला जलंधर पिंड हेरा।
0: गुरजिंदर जी बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। ते असी सवाल पूछे कि टिप टिप बरसा पानी ए केड़ी फिल्म दा सॉन्ग है, ते केड़ी एक्ट्रेस ने इस गाने दे विच
2: एक्टिंग कीती है जी,
0: ते फिल्म केड़ी है जी? हां जी चलो तुसी सही जवाब दिता, रवीना टंडन ने विच एक्टिंग कीती है, तुसी बन गए हो जी अज दे फिल्मी नंबर वन। ते गुरजिंदर जी तुसी दसो, तुसी मॉनसून दे विच की केड़ियां फिल्मां देखना पसंद करते हो, या केड़े गाने तुहानूं पसंद है? पुराने गाने पसंद है कि अज दी हाइप वाले ओल्ड सॉन्ग म्यूजिक नहीं पसंद, ते तड़कते भड़कते गाने पसंद है?
2: नहीं जी सर जी, पुरानी ही फिल्मां देखियां आपां, ते पुराने ही गाने पसंद है आपां।
0: ते केड़ा गाना साडे गुरजिंदर जी नूं सब तों ज़्यादा पसंद है
2: सर जी? पंजाबी कहिंदी जी।
0: पंजाबी भी दस दिओ, हिंदी भी दस दिओ, कि थोड़ियां जिहियां लाइनां गा के सुनाणियां फिर। हाँ जी गुरजिंदर जी,
2: मैनूं
0: लगदा सच्ची उठ जांदा होणा।
1: बहुत ही वधिया, बहुत ही वधिया।
0: गुरजिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रोग्राम दे विच जुड़न लई, इदां ही फिल्मी नंबर वन सुनदे रहा करो। ते दोस्तों तुसी भी हिस्सा बन सकदे हो जी फिल्मी नंबर वन दा, ते कुछ नहीं करना, बस आसान जे सवाल है, आसान जे जवाब है देनी ता है।
1: बिल्कुल, इन्ने औखे सवाल दा अज असीं लेके नहीं आए, है ना?
0: ते बस फिर एक होर सौखा सवाल हो जावे साडी ऑडियंस लई।
1: चलो फिर ठीक है।

0: जी हाँ दोस्तों, प्रोग्राम लव यू जिंदगी इसी तरीके ना कंटिन्यू रहेगा। हुण तुसी पूरे 6वीं ते सुनोगे परदेशी खबरां साडे प्राइमरी चैनल तो ते जाना किते नहीं है जी, क्योंकि लव यू जिंदगी प्रोग्राम विच तुहाडी यार जे दोस्त भी बड़ी सारियां गल्लां लेके आएगी, एक कहानी भी तुहाडे नाल शेयर करनी है जी, तुहानू इंस्पायर भी तो करना है। तो सो लव यू जिंदगी प्रोग्राम नू आपां कंटिन्यू रखांगे। हुण तुसी सुनोगे साडे दिल्ली चैनल तो परदेशी खबरां।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਗਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀ ਟੀ ਐੱਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ 6:20 'ਤੇ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: हो गया इंतजाम।
3: किस दा?
2: गुड्डी दी फीस दा।
3: दिखा 20,000 दा लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज किन्ना है? लोन सिर्फ नियंत्रित संस्थावां तो ही लो। लोन दा विचार लोड अनुसार, वो भी चेक करके। हो गया इंतजाम। तनखा एडवांस च भेजी है।
4: RBI कहंदा है
5: सही वित्तीय रवैया तुहानू बचाएगा हमेशा।
6: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो प्रादेशिक खबर।

सुनो, पहला इस बुलेटिन दिया खास खबरें। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी लहर सुधारा, डिजिटाइजेशन आते पेशेवर प्रबंधन राही पसार दे एक नवे पड़ाव विच दाखल हो रही है। देश अज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म वरीगंढ से उन्होंने नमन कर रहा है। पंजाब ते चंडीगढ़ विच भी इस संबंधी प्रोग्राम आयोजित। 17वें राष्ट्रीय युवा संसद मुकाबलियां 2024-25 विच पंजाब दे दो ते हरियाणा दे एक विद्यक अदारे नूं जेतू ऐलानिया गया है। पंजाब सरकार वल्लों ऑनलाइन NRI मिलनी 8 जुलाई।

प्रोग्राम लव यू जिंदगी चल रहा है जी। बहुत सारे हंसी मजाक तो बाद एक इंस्पिरेशनल स्टोरी तो बनती है जी। प्रोग्राम का मकसद ही यही है। तो शुरुआत कर दिया बिना देरी तो तहानू एक कहानी सुना जा रही हाँ पंजाब के एक ऐसे नौजवान की जिसने ना तो किसी सरकारी नौकरी की उड़ीक की कभी तो ना किसी वे फंड की ना ही किसी चमत्कार की। उसने बस अपनी धरती माँ का दर्द पछाणिया कला ही निकल पिया एक अजिहे राह से जिसनू लोग पागलपन कहते हैं। जी हाँ, एक कहानी है मानसा के एक साधारण जे पिंड रहने वाले 25 साल के नौजवान मनप्रीत सिंह की, जिसनू अज पूरा इलाका ना रुखा वाला बाबा जा पंजाब का गूगल मैन कहता है। सो आखिर इन्हें क्यों कहा जाता है जी, शुरुआत करते हैं। गल कुछ साल पहला दी है जदों पंजाब दियां गर्मियां अपने सिखर ते सन, धरती तप रही सी अते अखबारां दे विच रोज़ खबरां आउंदियां सन। पंजाब दा पानी मुक रहा है, रुख कट्टे जा रहे ने, प्रदूषण वध रहा है। असीं सारे खबरां पढ़दे हाँ, एक दो पल अफसोस जताउंदे हाँ, सरकारां नूं गालां कर दिंदे हाँ अते फिर एसी चला के सो जांदे हाँ। पर मनप्रीत वक्खरी मिट्टी दा बनिया होया सी। एक दिन ना वो अपने पिंड की एक सड़क तो लंघ रहा सी, सख्त गर्मी सी, दोपहर के 2 बजे सन। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी ना सड़क किनारे बिना किसी छां के तपदी धुप्प विच बैठा हफ रहा सी।

क्या बात है, किसका रास्ता देखे, यानी कि वाकई सानू वैसे नहीं पता हुंदा सी, राहवां ते चलता रहे हुंने आ पर सानू नहीं पता हुंदा कि अगला जिहड़ा मोड है वह सानू किस डायरेक्शन वल जिहड़ा है लै जाएगा। पर इत्थे चेतन आनंद जी नू भी नहीं पता सीगा कि सीधा वह डायरेक्शन नहीं, सीधा जनाब डायरेक्शन ही करनगे, यानी कि फिल्मों की डायरेक्शन ही करनगे। ओके जी, सो स्कूल विच पढ़ाउंदे पढ़ाउंदे हुण तक की बीतिया मैं दस देवां कि बई चेतन आनंद जी जिहड़े ने वह अफसर बनना चाहुंदे सीगे सिविल, ते उस तो बाद देहरादून दे डून स्कूल दे विचो हिस्ट्री दे टीचर लग गए ने। तो जो बतौर अध्यापक जो पढ़ाते पढ़ाते चेतन साहब ने सम्राट अशोक ते एक शानदार स्क्रिप्ट लिखी। बस फिर किसी उस स्क्रिप्ट नूं लैके 1940 दे दहाके विच ओह माया नगरी बॉम्बे पहुँच के डायरैक्टर फनी मजूमदार नूं मिलन। तो उन्होंने पर्सनैलिटी तो इन्ने प्रभावित हो चेतन आनंद जी की परसनैलिटी तो कि 1944 की फिल्म राजकुमार विच बतौर हीरो कास्ट कर लिया, यानी कि टीचर तो सीधा एक्टर। मतलब तुसी सोच रहे हो कि मतलब बस कोशिश करो निकलो, तुहानू खुद नहीं पता हुंदा कि अगले ने देखने वाले ने की ही वेख लेना है ते कित्थे कहानी पहुँच जानी है। ईवन अज तो मैं भी सरप्राइज हो रहा वा कि किवें किवें इन्हां दी कहानी चली है। कोई गल नहीं, अगे होर जाणांगे। फिलहाल एक छोटा जिहा खूबसूरत गीत तुसी सारे जदों ए गाने सुनोगे तुसी भी हैरान होगे कि अच्छा ए फिल्म भी इन्हां दी है।

जी दोस्तों, इंजॉय करे प्रोग्राम मसाला मिक्स एंड हूँ ताज़ा ताज़ा एक खबर मेरे को पहुंची है। तो मैं कहा चलो तुहानू वो खबर जिहड़ी है तुहाडे तक भी डिलीवर जिहड़ी असी कर दिंदे आ। तो जिवें कि असी सारे जानते हैं कि रीसेंटली इंडियन जिहड़ी क्रिकेट टीम है उन्हां दे पहला आयरलैंड नाल मैच सीगा, जो कि 2-2 मैच असी हार गए T20। उस तों बाद पहला मैच ड्रॉ हो गया ड्यू टू रेन, दूजा मैच भी असी हार गए। एंड इन चारां मैचेस दे विच संजू सैमसन की परफॉर्मेंस जिहड़ी है बिल्कुल जीरो पुअर जिहड़ी है रही है। हालांकि संजू सैमसन ने ही जिहड़ा सारा T20 वर्ल्ड कप जिहड़ा रीसेंटली असी जित्तिया उहदे विच सोहणा चंगा परफॉर्म जिहड़ा है कीता, पर फिर भी चार लगातार मौके देण तो बाद टीम ने की किया जिहड़े तां हुण 2-3 मैचेस ने उहदे विच शायद उहनां नूं मौका मिले नहीं मिले पता नहीं, पर जिहड़ी आउण वाली अगली T20 सीरीज़ है जो कि जिम्बावे दे नाल है, जो कि 23 जुलाई तो शुरू होएगी, उहदे विचों हुण संजू सैमसन नूं ब्रेक जिहड़ी है दे दित्ती गई है। एंड उस ब्रेक तो बाद किन्नू मौका मिलिया यह बड़ा इंट्रस्टिंग है। जी हाँ, पंजाब किंग्स 11 वालों बैटिंग करते ओपनर करते हुए प्रभ सिमरन अपनी मेडन कह लो कि जर्नी जी शुरू कर जा रहे हैं। मेडन कॉल जी उन्होंने आ चुकी है इंडियन क्रिकेट टीम वालों, यानी कि वह हूँ वह भी इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी जी पाएंगे। सो बहुत ज़्यादा उन्होंने मुबारक। एंड डेफिनेटली जो उन्होंने परिवार है बहुत सारा मतलब इस वक्त शुकराना कर रहा होएगा उस परमात्मा का, क्योंकि फाइनली जी एडी वी कॉल जी आई है। पर इस दे नाल ही संजू सैमसन की गल अगर दोहरी थोड़ी दोबारा विचारी जाए कि तुसी अगर बहुत ज़्यादा सोहना काम किया भी है तो तुहानू एक उहदी किन्नी कु ज़्यादा कंसिस्टेंसी बनाउण की लोड़ है, नहीं तो तुहानू चार दिन बाद यानी कि थोड़े दिन बाद भुल भी जाया जा सकता है। साढ़े सामने एक बड़ी वड्डी एग्जाम्पल जी सैट हो रही है।

जी एंजॉय कर रहे प्रोग्राम सलाम मिक्स ते समा चुका रात दे 8:41 ते मैनूं लगदा कि बहुत सारियां जिहड़ियां गल्लां ने मेरे कोल तां हैगे नहीं शायद तुहाडे कोल भी हुंदियां तुसीं सानूं वैसे वट्सअप कर सकदे सी अगर तुहाडे कोल गल्लां ने मैं तुहाडियां गल्लां भी पढ़ के तुहानूं सुना दिंदा ते चलो खैर अगे ना हूँ आप तुहानूं गल समझा रहे हैं कि जिहड़ा तुसीं हैरान हो जाओगे कि भाई अच्छा जी ये क्या चल रहा है सो गल इदां है कि चाइना दे विच जिदा इंसान जिहड़े ने पढ़ाए जाते हैं इदा ही रोबोट्स नूं भी हुण पढ़ाया जा रहा है जी हाँ रोबोट्स नूं खास तरीके की ट्रेनिंग जिहड़ी है दित्ती जा रही है ना स्कूलों दे विच रोबोट नूं टैक्निकल स्किल्स नर्सिंग स्किल आर्ट्स स्पोर्ट्स जैसे अलग अलग प्रोग्राम जिहड़े ने वह सिखाए जा रहे हैं नो डाउट उन्हां दी प्रोग्रामिंग जिहड़ी है नैचुरली उन्हां अंदर पा दित्ती जाती है सब कुछ दस्या जाता है बट फिर भी जदों करन दी गल आउंदी है तो काफ़ी बार जिहड़ी ह्यूमन बॉडी कर सकती है और रोबोट नहीं कर सकते होंगे तो रोबोट्स नूं देखण वास्ते कि रोबोट नूं कित्थे प्रॉब्लम आ रही बेसिकली उन्हां नूं सिखांदे सिखांदे भी बस आही इंसान जिहड़े ने सिख रहे ने कि अच्छा जदों आह चीज़ उन्हें चुकी तो किद्दां उन्हूं की प्रॉब्लम आई किद्दां उन्हां दी बॉडी दे विच उस चीज़ नूं नहीं चुक पाया या नहीं उठ पाया या किद्दां उन्हें पैर रखिया किद्दां उन्हें हाथ हिलाया हर चीज़ नूं चंगी तरह क्लोजली ऑबजर्व करन दे लई एक रोबोट स्कूल जिहड़े ने खोल रहे ने जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड चर्चावां दा हिस्सा जिहड़ा ने उस वक्त बन चुके ने ठीक है जी सो एक होर हुण अगली खबर वल वधदे आ क्योंकि टैक्नोलॉजी सिर्फ हुण चाइना विच नहीं है जनाब इंडिया विच भी है जी हाँ इंडिया दे आंध्र प्रदेश दे ईस्ट गोदावरी जिले दे अर्थमुरु पिंड दे विच होया कि 65 साल दे जिहड़े मकैनिक सट्टी शिवा नारायण जिहड़े रेड्डी ने उन्होंने अपनी पत्नी उन्हें पत्नी नूं ना प्रॉब्लम सी पौड़ियां चढ़न दी सो उन्होंने वह पौड़ियां की दिक्कत नूं दूर करन दी लई की कीता उन्होंने अपने घर दे विच खुद का ही एक एक्सलेटर जिहड़ा है वह बना लिया जी हाँ एक्सकलेटर इन्ना खूबसूरत बनाया कि बई हुण वह मतलब बड़े आराम दे नाल ਤਾਂ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਸੱਤਿਆਬੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਰੈਡੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਬਸ ਰੈਡੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਕਲੇਟਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਸ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੀਂ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

नमस्कार, वंस अगेन सत श्री अकाल, वंस अगेन गुड इवनिंग, वंस अगेन आदा, वंस अगेन एंड ऑलवेज जिंदगी जिंदाबाद। रात दे 9:00 पूरे 3 मिनट हो चुके ने, एफएम रेनबो ते प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है जी दिल चाहता है। एंड दिल चाहता है दे विच थोड़ा अपना दोस्त मोहित रुबल थोड़ा इंतजार कर रहा है, वेलकम करता है, सो दैट कि तुसी प्यारियां प्यारियां फरमाइशां जिहड़ियां ने प्रोग्राम दे विच भेजो। तो अज एक नवा कीर्तिमान, नवा रिकॉर्ड जिहड़ा है असी बनाउने आ कि भाई अज किन्ने मैसेज जिहड़े ने साडे प्रोग्राम दे विच पहुँचते हैं। चलो जी शुरुआत करते हैं प्रोग्राम दे विच पहले मैसेज की। पहला सानू मैसेज आया लिखिया जनकपुरी महाराष्ट्र जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो ते मैसेज कर रहे हैं गुड ईवनिंग रिस्पैक्टेड होस्ट जी, और फरमाइश कर रहे हैं लाल छिड़ी मैदान खड़ी गाना सुनना चाहते हैं फिल्म जानवर का। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला मैसेज है जी खुशनुमा गीत गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन न्यू दिल्ली तो, थैंक यू जी। अगला मैसेज गाँव घमंडिया सूरतगढ़ से जगदीश ढोकिया, परमीला ढोकिया, ज्योति शिवम ढोकिया, सरिता, सचिन, अमन्ना, तमन्ना, साइना, विष्णु, धोती, ईवा, धारनिया। फिल्म नाम आवाज़ पंकज उदास, बोल चिट्ठी आई है। ठीक है जी, फिल्म नाम चिट्ठी आई है चिट्ठी, वैसे चिट्ठी तो नहीं है, आपका प्यारा सा मैसेज आया है। सो ढूंढते हैं फिल्म का नाम, नाम नाम, और ये रहा नाम नाम नाम। ओके, तू कल चला जाएगा तो, अच्छा ये अलग गाना है, तो चिट्ठी आई है गाना ये रहा। ठीक है जी, और ये फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं आपकी, थैंक यू सो मच जी। अगला मैसेज आया है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कुंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, गीत के बोल चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, ओ हाउ स्वीट। अगला मैसेज नमस्कार जी, फिल्म मुगले आजम की तेरी महफिल में किस्मत, मजनू का टिल्ला से कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, थैंक यू जी। अगला मैसेज नमस्कार जी, फिल्म माया की तस्वीर तेरे दिल में, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा। ठीक है जी, फिलहाल प्रोग्राम में ये जो फरमाइश हमें पहुंची हमारे पास, नाम फिल्म की चिट्ठी आई है। सो देखते हैं कौन कौन से दोस्त जो है हमें चिट्ठी यानी कि व्हाट्सएप पर मैसेज जो है ऑनलाइन चिट्ठी जो है भेजते हैं। इंतजार करेंगे, आप भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं।

हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे नंबर पे हम अपनी फरमाइश भेजिए किसी भी हिंदी या पंजाबी फिल्मी गीत की। हमारा नंबर है 9855101027, यानी कि 9855 10 10 27।

जी, बहुत सारी चिट्ठियाँ यानी कि डिजिटल चिट्ठियाँ जो हैं मेरे पास पहुँच रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार बहुत सारा। अगे वद्दियाँ जी, अगे सानू जो मैसेज आया है, किसी ने सानू 8:03 ते ही मैसेज भेज दिता, अजे रात दे 9 भी नहीं बजन दिते। लिखे, प्लीज़ आज तो रिक्वेस्ट पूरी कर दो, प्लीज़। गुड इवनिंग टू आर जे FM रोहित रुबल, सॉरी FM रेनबो जलंधर सॉन्ग, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना दिलबर, फिल्म जिद्दी, मन्ना डी और गीता दत्त, म्यूजिक सचिन देव बर्मन, हम्बल रिक्वेस्ट बाय सूर्य चौहान, तहसील ठेओक, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। अरे हिमाचल वालों की बड़का जी, के बात कर दी बड़का जी, ऐसे मत बोलो, फरमाइश तो पूरी कर ही देंगे। हैं जिद्दी हो आप, सॉरी जिद्दी फिल्म का नाम है, तो ठीक है जी बड़का जी, हम तो हिमाचल से ही आए हैं, तो सीधा आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। कौन गाना बोल दिया आपने, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना कभी बना डी डी, तेरे गाना कहाँ गया? अरे भाई फिल्म के गाने ही बड़े ज़्यादा हैं। ओके, ये गाना गाया है ये रहा गीता दत्त और मन्ना डे, जरूर हो गया बड़का जी गाना, टेंशन नहीं लेनी। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें मैसेज आया, फिल्म सत्य सत्ता बोल झुका के सर को बोल मैडम, उत्तम नगर दिल्ली से बोतराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। हाई अगला मैसेज आया, गुड इवनिंग मोहित वीर जी, किवें हो? मैं बहुत वधिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया हाल चाल पूछने लई। सोनू रवि राज गुलशन लक्की बलदेव नगर जलंधर सिटी तो, मूवी हम है राही प्यार के ट्रैक, यूं ही कट जाएगा सफर। अगला मैसेज आया, दिल चाहता है शो एनी सॉन्ग टू रीड आउट माई नेम प्लीज RJ फ्रॉम नेम हितेंद्र दास आसाम से। बिल्कुल जी, थैंक यू। कार्यक्रम दिल चाहता है के प्रस्तुतकर्ता जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, हार्दिक अभिनंदन। फिल्म सूरज, आवाज मोहम्मद रफी, गीत के बोल भरपूर बरसाओ मोहिता है। और अगर मैसेज भेजा है, गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा से राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, धन्यवाद, थैंक यू जी। करणवीर हाउस पुचो कैंचिया बठिंडा पंजाब तो, नमस्कार जी। प्रेम सिंह जोड़ा

जीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिंह एकम, दमन अभिजोत किसी भी गीत में शामिल किया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं सब प्रिय नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। गीत दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, फिल्म आखिर क्यों, आवाज़ लता मंगेशकर, अमित कुमार, नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, वेद मिड्डा, अलका मिड्ढा। अगला मैसेज, वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जैव सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शिवचंद्र बजाज, साहेब बजाज, बिट्टा बजाज। देखिए ऐसा है कि जो मैसेज पढ़ चुका हूँ मैं ठीक हूँ, जो मैसेज नए आ रहे हैं छोटी सी बात हमें बता दीजिए कि क्या आपके इलाके में कल और आज बारिश हुई। थोड़ा सा बस ये जानने के लिए कि लोग कितने एक आँखें खोल कर और कान इधर कर कर प्रोग्राम में मैसेज कर रहे हैं, बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। बाकी आप सुनने जा रहे हैं फिल्म सिद्धि 1964 में बनी, मैं तेरे प्यार में गीत के बोल है मैं तेरा प्यार में।

अब ऐसा है बड़का जी, 8:09 पर फरमाइश भेज के आपने अगर पूरी करवा ली है, ठीक है। कौन थे ये दोस्त? हाँ, ये थे सूर चौहान, तहसील डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश से। तो आप हमें मैसेज कंफर्म करके भेजिए कि हाँ भैया आपने ये गाना सुना है। पता तो चले भाई साहब प्रोग्राम सुन रहे हैं, फरमाइश भेजे घंटे पहले हैं। अगला मैसेज है, दिल चाहता है मैं तुझसे मिलने आई, मंदिर जाने के बहाने फिल्म हीरा मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गौरी और ओम प्रकाश सुरलकर, धन्यवाद। अगला मैसेज है, नमस्कार जी हाजी का अभिनंदन, रेनबो जलंधर के लिए मोहब्बतें, दुआएं और नेक तमन्नाएं। गीत ये आपने क्या कह दिया? अरे हमने क्या किया, हम तो बहुत तहजीब से बात कर रहे हैं। स्वर अचार भोसले मोहम्मद रफ़ी, फिल्म खुदा कसम चंडीगढ़, सतीश अनेचा बिमला नेचा, धन्यवाद। अगले मसीह गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश फिल्म मंजिल और युद्ध कड़वासरा, गीत रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन भी गया, आज इस मौसम से कैसे लगी है। रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन, डरा डरा डरा, ये फिल्म हमें क्यों नहीं मिली? इतना सुंदर गाना है, गाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। रोइम झिम और फिर है

ठीक है, और ये गाना मिल गया। ओके थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। आगे मैसेज है, दिल चाहता है मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जय जय आकाशवाणी पर सुस्त करता जी सुप्रीम। फिल्म एक फूल दो माली, गायक मोहम्मद रफ़ी जी, बोल ओ नन्हे से फरिश्ते, चक 15 PS, जिला श्री गंगानगर राजस्थान। तो जी सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह जोसन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया तो आदर्श पाल सिंह, वैनकूवर कनेडा तो रॉबिन सिंह। थैंक यू जी। अगले मैसेज, नरेश कुमार पॉल, त्रिपुरा पॉल परिवार, विलेज संगवाल, जलंधर, फिल्म अक्सर, द गीत झलक दिखला जा रहे। थैंक यू जी। अगले मैसेज, फिल्म पड़ोसन सॉन्ग, एक सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, भरत मक्कड़, मन्नत मक्कड़, कमल सानी, पींगा वाला च्यों को कराया जलंधर तो। अगला मैसेज, करणवीर सिंह पॉल, त्रिपुरा पॉल परिवार, सराबा नगर, जलंधर तो। फिल्म ब्लैक मेल द गीत, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला एक होर मैसेज है, सत श्रीकाल जी, दिल चाहता है विच मोहित रुबल जी, बलविंदर सरा, गुणतास, रसनदीप, मनिंदर सरा, पिंड मोरजन सिखा, हनुमानगढ़, फिल्म नाजायज़ गीत बोल, तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दो। वाह। अगला मैसेज है जी, प्रोग्राम दिल चाहता है अमरगढ़, जिला श्री गंगानगर तो, कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरनूर मान, कुलविंदर कौर, हरविंदर मान, कोई भी फिल्मी गीत है। प्रोग्राम लाइव सुन रहा जी, बड़ा चंगा लग रहा है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। फिलहाल असी इंजॉय करन जा रहे हैं जी, रिम जिम गिरे सावन।

क्या बात है, खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम दिल चाहता है, जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं 102.7 एफएम रेनबो पर अपने दोस्त मोहित रुबल के साथ। लो जी, अगला मैसेज आया जी, साडे कोल पहुंचे है, लिखे है, नमस्कार जी, होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल और अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल, लिखा है फिल्म गोरवल पार्ट वन, गीत क्यों आगे पीछे डोलते हैं बौरों की तरह। अरे बड़ा सा प्यारा सा गीत ढूंढ लिया आपने, हैं ढूंढूं कर गाना मिल जाए। गोलमाल, यहाँ पे गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल क्यों आगे पीछे, अरे मिल गया। और ये फरमाइश हमें भेजी है, अच्छा बोल दिया मैंने, जयराम खोरवाल, ओके धन्यवाद सर गीत प्ले करने के लिए, प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला मैसेज, सत श्रीकाल सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश तो, यशमीत सोम्या अविरल सिंह, कोई भी सुना दो, ठीक है जी, धन्यवाद। अगला मैसेज जी, फिल्म दो रास्ते गीत के बोल ये रहे, और फरमाइश करता है जाकिर मुलानी, सुमैया सुभान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर, चाचर, चाची और पूरा मुलानी परिवार, ठीक है जी। हमारे महाराष्ट्र में 4 दिनों से लगातार भारी वर्षा हो रही है सर जी, अरे प्लीज अपना ध्यान रखिए, मैंने खबरों में भी देखा था। देखा जी सर जी, प्रोग्राम लाजवाब पेश कर, अरे बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म शागिर्द, आवाज लता मंगेशकर, दिलवर प्यार वर, मैं कर जानू रे, जानू तो जानू बस इतना जानू तो मैं अतना मानू रे, मुताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, विद्या कुमारी, हमारे महाराष्ट्र में 4 दिनों से बारिश हो रही है। और लिखा है अगर मुमकिन हो तो हमारा गीत चलाना जी, बहुत बाकायदा लाइव सुन रहे हैं, अरे बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगला मैसेज, फिल्म त्रिशूल गीत मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है, भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा, पूजा परिहार, मैसेज जरूर शामिल करें। अरे हो गया, आदरणीय उद्घोषक उद्घोषक जी, प्यार भर नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, कार्यक्रम आपकी पसंद, फिल्म आना मिलो, अरे कार्यक्रम का नाम आपकी पसंद नहीं है, दिल चाहता है, ऐसे ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे कोई भी मैसेज आप आकाशवाणी के किसी और प्रोग्राम का कॉपी करके यहाँ पेस्ट नहीं कर सकते, आपको बकायदा लिखना पड़ेगा कि मैसेज जो है जलंधर एफएम रेनबो मोहित रुबल को ये जा रहा है।

तब हम आपकी फरमाइश लेंगे, सिर्फ नाम लेंगे, पढ़ोगे। सफीदो सिटी हरियाणा से, नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो लवली खन्ना, रजत खन्ना, लव खन्ना, कुछ खुश खन्ना और समस्त खन्ना परिवार। ठीक है, ये थोड़ी सी आदत चेंज करनी पड़ेगी। अगला मैसेज, आकाशवाणी दिल चाहता है प्रोग्राम पेश करने वाले आरजे को नमस्कार। कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब चल रहा है। हम आपके कार्यक्रम से पहली बार जुड़ रहे हैं जी। हमारी फरमाइश को जरूर जरूर शामिल करें, आपकी अति महान कृपया होगी। लिखने में कोई गलती हो तो माफी चाहते हैं। गीत भी सुनवा दीजिए, धन्यवाद। गगनोला धाता गंज जिला बदाऊ से, इसरत खान, शायरा बेगम और रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान, ईशान खान, आजम खान, एरहान खान। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें मैसेज भेजने के लिए। अगला मैसेज आया है हमारे पास, लिखा है प्रेम पूर्वक नमस्कार ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे यादव, डॉक्टर प्रशांत राजे यादव, कुमार संचित व्याल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्व देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षदा देशमुख, समस्त राजे यादव देशमुख और यार वायार परिवार। किसी भी गीत के साथ हमें शामिल जरूर करें, धन्यवाद। अगला मैसेज आया है हमारे पास, एनी सॉन्ग, लिखा है पहाड़ गज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलू नायक, मधु नायक। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। लो जी, सुनने जा रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत गीत।

जी दोस्तों, खूबसूरत प्रोग्राम तुसी इंजॉय कर रहे हो क्योंकि खूबसूरत लोग बड़ी खूबसूरती नाल खूबसूरत गीतां दी फरमाइश कर रहे ने ते खूबसूरती नू चंगी तरह इंजॉय कर रहे ने। लो जी हुण असीं अगे वधदे आ, अगे वी बहुत सारे दोस्त जिहड़े ने मैसेज कर रहे ने, उहना मैसेजेस नू प्रोग्राम विच शामिल करदे आ। मैसेज पहुंचे साढ़े तक, लिखिया फिल्म महबूबा 1976 स्वर किशोर कुमार, मेरे नैना सावन भादो और मामुलवाड़ी महाराज।

से सोपान ताइडे वसंत राव भोजने पी एस नहावकर। ठीक है जी। ओके जी। फिल्म का नाम है जी महबूबा। अगर तो लग जाती है फटाफट तो फिर अपन डेफिनेटली, और ये हमें मिल गई। और गीत के बोल हैं, गीत के बोल हैं मेरे नैना सावन भादो। ओके जी, ये गाना प्ले होगा। थैंक यू जी। अगला मैसेज, नमस्कार जी। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, रायदीप सिंह, गुरलाल, अविराज और पुत्री गुरनूर सिंह, शुभदीप। फिल्म बेताब गीत जब हम जवां होंगे। ठीक है जी, थैंक यू। और अगला मैसेज, नमस्कार वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती रोड़ा किसी भी गीत शामिल करो, धन्यवाद। अगला मैसेज, आदरणीय प्रसारक जी दुआओं में हमेशा याद रखना जी। फिल्म आराधना और गीत मेरे सपनों की रानी का भाव आओगी तू, अनारकली बाजार जगराओं से पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गावे मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और विनोद पुरी। और खुश रहो खुशियां बांटो जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल दुरुस्त। अगली फरमाइश, सुखवीर सिंह, कोमलप्रीत कौर, रोशनदीप सिंह, पिंड छाजरी, जिला संगरूर, एनी सोंग। ओके जी। अगला मैसेज आया जी, सुखदेव सिंह, नरेंद्र कौर, सनी मुनी काका, टू लाडी, मास्टर मोन, जनक नगर, जलंधर तो कोई भी गीत, मोहित रुबल जी दिल्ली से धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू। अगले मैसेज, नमस्कार गांव हिपरसोगा तहसील ओसा जिला लातूर से उस खान उस्मान शेख फौजी सायरा बानू शेख बाबा शेख सिमर शेख और करिश्मा शेख। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगला मैसेज, प्रसारक जी शिवामी नमस्कार, फिल्म सरस्वती चंद्र डापकी रोड अकोला से सुशील देवी मधुरकर, सुदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर। थैंक यू जी, थैंक यू। अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनाएं, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊ नाथ भजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, पृथ्वी वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुर पूरा मऊ से मुन्नाबाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ठीक है जी। अगला मैसेज, स्वप्रिय नमस्कार, पटियाल कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शुशांक साहू और सीमा साहू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। लो जी, अब गीत सुनते हैं। गीत के बाद दोबारा फिर से फरमाइशों का पूरा करने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।

जय ढिंगिया नमन ढिंगिया सादर नमस्कार जी फिल्म शोर पांजरे पानी तेरे रंग कैसा। और अगला ही फरमाइश भेजी है फिल्म तनहाई 1972 गीत बिड़े हुए आंचल से गाए किशोर कुमार साहब राजकोट गुजरात रशिम झरना भरत कुमार। अगला मैसेज आया है प्रोग्राम दिल चाहता है आदरणीय कार्यक्रम प्रसारित जी सलाम में मोहब्बत कबूल करो दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोन नगर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भाई प्रेम सिंह बड़वाल सुखवीर काजल बड़वाल लखवी रानो कृष्णा श्रीमती शिंदो परवीन शीतल नवीना रंगीला निशान अनमोल प्यारे बेटे चटकू मटकू जी आप हमारी फरमाइश जरूर पेश करना जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम जो फरमाइश है वो प्ले कर ही देते हैं जो कि हमें आई है फिल्म स्वर्ग से ए मेरे दोस्त लौट के आ जा।

जी नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप अपने थे, अपने ही हमें प्रोग्राम में मैसेज भेजते हैं और अपने जो है वो नाराज भी नहीं होते। ठीक है जी, अगला मैसेज है जी। मोहित साहब, थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग माय फेवरेट सॉन्ग जसवीर सिंह दोरा, थैंक यू सो मच जी। अगला मैसेज है, प्रिय प्रसारक जी प्यार भरे नमस्कार, गांव कृष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोने और योगिता हागोने और कुमारी प्याली हागोने, पार्थ हागोने, हागोने परिवार, थैंक यू सो मच जी पूरे परिवार को। अगला मैसेज है, आपको हमारा नमस्कार, दिल चाहता है कार्यक्रम फिल्म लोफर, आज मौसम बड़ा बेईमान है। बोरखेला पितरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुन्नत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुन्नत, चेतन नाहटा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चुटाला हरियाणा से द्वारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, गाने के बोल मैं सायर बदनाम, फिल्म नमक हराम। अगला मैसेज है, नरेश कुमार पोल त्रिपुरा पोल परिवार, विलय संगवाज जिंदर फिल्म अक्सर द गीत झलक दिखला जा रहे। ओके जी, अगला मैसेज है हमारे पास, नमस्ते फिल्म हिफाजत गीत मोहब्बत तो करते हैं सारा, और बदेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव,

फिल्म ऐसी प्रोग्राम दिल जाता है पेशकर्ता को प्यार भरे नमस्कार और फिल्म दोस्ती और गीत के बोल चाहूंगा मैं तुझे सांड सवेरे रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित और खुशी गोस्वामी पिंड चंजेड़ी तहसील खरड़ जिला SAS नगर तो लियाकत अली निशा शाहीन यासमीन अरमान मलिक वाले सारे आकाशवाणी परिवार को प्यार सत श्रीकाल सन तुम किसी भी गीत शामिल करो अगला मैसेज जी हमारे यहाँ तो कल और आज बादल दिख रहे हैं लेकिन बरसे नहीं जी सर जी हमारा नाम भी प्रोग्राम में शामिल करे 37 मिनट से इंतज़ार में हूँ। अरे दोस्त आप क्या आपको क्या बताऊँ कि कितने मैसेजेस आज फिर से हमारे पास पहुँचे हैं और फिर भी आपका नाम ज़रूर लेंगे। किसी का भी नाम बिना लिए प्रोग्राम वाइंड अप नहीं करते हम। प्रोग्राम दिल जाता है प्यार भरी नमस्कार और मूवी आबरू गीत जिन्हें हम भूलना चाहें और ये मैसेज भेजा है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जसी सीता और गीता और लिखा है एनी सॉन्ग में हमें शामिल करें। खुश रहो आबाद रहो ठीक है जी। और लिखा है अच्छा मैसेज फरमाइश दोबारा भेज दिए इन्होंने। अगला मैसेज हमारे पास पहुंचा है नमस्कार जी गीत अब के सावन में गिरे रमझिम और ये फरमाइश भेजी है गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खट्टक विमला देवी अमरजीत सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक कुमार और कुमारी पूजा खट्टक ठीक है जी। और ये लास्ट मैसेज हमें भेजा है किसी ने हाथ जोड़कर और सोचा होगा कि भाई साहब ने

और ये फरमाइश भेजी है गांव जाखोद राजस्थान से शंभू दयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खट्टक। ठीक है जी, और ये लास्ट मैसेज हमें भेजा है किसी ने हाथ जोड़कर, और सोचा होगा कि भाई साहब ने सारे ही मैसेज जो हैं वो ले लिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी। और अब इस प्रोग्राम के आखिरी गीत फिल्म लुटेरा का ये गीत एंजॉय करेंगे हम सभी। और थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर ब्यूटीफुल मैसेजेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, एंड अगला प्रोग्राम भी है, सो कीप लिसनिंग।

दोस्तों, रात दे पूरे 10 हो चुके ने ते फिल्म रेनबो ते महफिल सज चुकी है जिसका नाम है शामे गजल। प्रोग्राम शामे गजल लेके हाजिर हो चुका थोड़ा दोस्त मोहित रूबल। इस प्रोग्राम में तुसी एंजॉय करोगे 102.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो ते। सो बहुत खूबसूरत गज़ल तुसी इस प्रोग्राम दे विच एंजॉय करोगे। जेकर तुसी भी गज़लां दे शौकीन हो तुसी भी सानू गज़ल दी फरमाइश जिहड़ी है भेज सकदे हो साडे वट्सएप नंबर 9855 10 10 27 दे उपर।

कि कोई पूछेगा जिस दिन वाकई कि ये जिंदगी क्या है, कोई पूछेगा जिस दिन वाकई ये जिंदगी क्या है, जमीन से एक मुट्ठी खाक लेकर हम उड़ा देंगे। क्या बात है, बहुत ही डी, बहुत ही रियल शायरी जो कि है अनवर जलालपुरी साहब जी। एफएम रेनबो ते तुसी इस वक्त एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम शामे गजल।

रिज्क जैसा है मुकद्दर में लिखा होता है, रिज्क जैसा है मुकद्दर में लिखा होता है, फन किसी शख्स की जागीर नहीं हो सकता। क्या अजीब होती है आदाबे रुखसते महफिल, अजीब होती है आदाबे रुखसते महफिल कि वो भी उठ के गया जिसका घर ना था कोई। एफएम रेनबो ते तुसी एंजॉय कर रहे प्रोग्राम शामे गजल।

पराया कौन है और कौन अपना सब भुला देंगे। पराया कौन है और कौन अपना सब भुला देंगे, मताए जिंदगानी एक दिन हम भी लुटा देंगे।

तुम अपने सामने की भीड़ से होकर गुजर जाओ, तुम अपने सामने की भीड़ से होकर गुजर जाओ कि आगे आने वाले तो हरगिज ना तुमको रास्ता देंगे। जलाए हैं दिए तो फिर हवाओं पर नजर रखो, ये झोंके एक पल में सब चिरागों को बुझा देंगे। कोई पूछेगा जिस दिन वाकई ये जिंदगी क्या है, जमीन से एक मुट्ठी खाक लेकर हम उड़ा देंगे। दोस्तों प्रोग्राम तुसी इंजॉय किया मेरे नाल। प्रोग्राम का नाम शामे गज़ल, तो बहुत खूबसूरत गज़ल असी प्रोग्राम दे विच सुनी है। तो यह जो हुणे गज़ल मैं पढ़ने की कोशिश की है, जिवें कि पहला कि मैं शायरी पढ़ी सी अनवर जलालपुरी जी, सो उन्हां दी गज़ल पढ़ने की कोशिश की, उम्मीद है तुहानूं पसंद आई होगी। फिलहाल हुण असी इंजॉय करांगे प्रोग्राम की आखिरी गज़ल जसमीत कौर हुणां दी आवाज़ दे विच।

प्यारे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं एफएम रेनबो के प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। फिलहाल रात 10:41:31 हो चुके ने, हम एंजॉय करेंगे अगला गीत मोहम्मद रफी जी की आवाज़ के विच, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो

ये तो सुन जाए करसी प्रोग्राम एक प्यार का नगमा है। फिलहाल रात दे 11 बज रहे ने। मैनू तुसी हुणे इत्थे दो इजाजत। थैंक यू। एफएम बैंड 102.67 मेगाहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस उत्तर रात दे 11 बज चुके ने। तो साडी अज दे सभा दे सारे ही प्रोग्राम हुण इत्थे खत्म हुंदे ने। सवेरे फिर मिलांगे 5:55 ते नवे दोस्त नवे प्रोग्राम दे नाल। तद तक लई सानू दो इजाजत। शब्बा खैर। जय हिंद।